0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जेंडर स्टीरियोटाइप्स मेरे लिए इतना बड़ा डील ब्रेकर है. सो आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप और हमारी ना काफी सही कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सब कुछ ऑसम था. एंड देन उसने तीसरी डेट पर मुझसे ये पूछा कि अच्छा तो क्या क्या खाना बना लेती है तू. आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड हाँ. ही सेड हाँ क्या क्या खाना बना लेती है तू. आई वॉज लाइक और कितने करोड़ कमा लेता है तू. तो ही सेड कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या कॉमन है. आई वॉज लाइक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कॉमन है. तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे क्या खाने खाने बनाने आते हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ एंड यू आर प्रिज्यूमिंग कि किचन में मेरा हाथ तो काफी लाइक स्किल्ड होगा. तो मैं भी प्रिज्यूम कर रही हूँ क्योंकि तू लड़का है एंड यू आर ऑफ अ सर्टेन एज. इतने करोड़ तो तूने कमा ही लिए होंगे. तो ही सेड कि ये काफी ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ रही है तू मुझसे. सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड कि तू भी मुझसे काफी ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल डज नॉट मीन कि पिंक मेरा फेवरेट कलर है और खाना बनाना मेरा फेवरेट पास टाइम है. और उसके बाद ऑब्वियो आई डिड नॉट मीट दैट गाय अगेन. बट मेरा पॉइंट ये कि जब आप किसी लड़की या लड़के को मिलते हो ना, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स लेके मत जाया करो कि बंदे के तो मसल्स होंगे ही, बंदा तो जिम जाता ही होगा, बंदी के बाल लंबे ही होंगे. जेंडर स्टीरियोटाइप्स

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: The truth is, लोगों से एक girlfriend संभाली नहीं जाती. आपके पास चार चार girlfriends हैं in four different cities. एक को पता चल गया ना दूसरे के बारे में, तो अब आएंगे असली मजे. There you guessed it. It is time for the secret box. जो भी आपका confession, hit me up on Insta या FP. Let's get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. और मेरे साथ line पर है मेरे mystery caller. Hello, naughty boy.
2: Hello, रोशी.
1: Oh God, you sound hot. बोल भी रहा या थैंक यू सो मच. सो हॉटी मिस्ट्री कॉलर, मुझे ये बताओ कि आपकी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड है या तीन चार? नाइस फॉर अ गाय हू साउंड्स दिस हॉट. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर आपकी तीन चार गर्लफ्रेंड्स हो. लेकिन अगर वो आपकी कन्फेशन नहीं है तो क्या है आपकी कन्फेशन?
2: माई कन्फेशन इज कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को मिलाने लेके जा रहा था मेरे घर पे. सो मम्मी थी नहीं घर पे, माई फादर वॉज देयर. सो हम घर पे गए, मैं सारी बातें कर रहे थे. पापा पूछ रहे थे क्या करते हो, क्या कैसे करते हो, क्या सारी चीजें, यही सारी चीजें जनरली जो होती है डिस्कशन. एंड खाए जा रहे थे लगातार लड्डू, खाना, सैंडविच, मतलब लगातार खाए जा रहे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट ही डिड वाज ही फार्टेड. माय फादर फार्टेड.
1: और क्या उन्होंने लाइक लाउड फार्ट किया कि सबको सुनाई दे जाए आपकी?
2: यस, लाउड फार्ट किया. एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट ही डिड.
1: व्हाट?
2: उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपने क्यों फार्ट किया?
1: व्हाट, आर यू सीरियस?
2: डोंट ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी प्लीज. And I, it was so embarrassing. Yeah, मैंने कहा यार, how can my father do this to me?
1: Oh my God, तो आपके पापा आपकी girlfriend को impress करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपना like fart का blame आपके ऊपर लगा दिया.
2: And that was an embarrassing situation for me to handle.
1: Oh my God. तो फिर आपने क्या किया? आप तो ये भी नहीं कह सकते होगे कि यार नहीं
2: रहा. मैं कुछ नहीं कह सकता था, मैं चुप रहा.
1: Dude, this is called a serious serial confession. आपको तो रोशिफिकेशन की बहुत जरूरत है यार. एक गहरी सांस लो हॉटी.
3: You've been roshified.
1: अगली बार से ना जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाओ या उनके साथ डिनर या लंच कराने ले जाओ, जस्ट मेक श्योर कि आपकी मम्मी साथ में हो, तब आपके पापा ऐसे नॉटी काम नहीं करेंगे.
2: हाँ, ये आइडिया अच्छा है रोशी,
1: है ना? इसे पक्का ट्राई करके देखना. और अगर आपकी जिंदगी में फिर से ऐसा कुछ होना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सेंड मी योर नंबर. और आप, आपकी भी जिंदगी में अगर ऐसी कोई कन्फेशन है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FP. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. एंड वी विल गेट टॉकिंग बेबी, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: catching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
3: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
0: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
6: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा.
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba! Roshi Baba!
2: Roshi Baba!
3: काम डाउन माय भागजनों, अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में फ्रेश झगड़ा हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते हो, सेम घर में रहते हो और वट एवर द सीन इज, या इवन आपका झगड़ा फोन पर हुआ है, अपने जल्दी से मंदिर में जाओ, वहां से घंटी उठाओ, या अगर आपके पास एक जनरल बेल इन लाइफ है उसे अपने कमरे में जोर जोर से चारों कोनों में बजा लो। अकॉर्डिंग टू साउंड थेरेपी, जैसे ही आप इस बेल की साउंड इंट्रोड्यूस करोगे इनटू द रूम, जो स्टैग्नेंट हैवी क्वारलसम एनर्जी है वो सारी एनर्जी विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स डिसिपेट हो जाती है, विच बेसिकली मींस आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपकी जो इंटेंस डेंस एनर्जी है वो शांत हो जाएगी, यू विल बी इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड टू डिसाइड कि आपको ये झगड़ा आगे बढ़ाना है या ये झगड़ा काट देना है, जैसे एक बीटी को काटते हैं बाय वॉचिंग अ गुड फिल्म। ऑन दैट नोट, अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, Why don't you hit me up Insta पर या FB पर, I'll be happy to help you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead darling, do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

रिलेशनशिप में कितनी भी मोहब्बत हो रोसी, लेकिन अगर बेड्स अलग अलग हो तो रिलेशनशिप बहुत दूर तक चलता है। ये मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा था हमारे एक रिलेटिव की एक्टिंग करते हुए, बिकॉज मेरा भाई हैज बीन सक्सेसफुली टचवुड इन अ लॉन्ग टर्म 4 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप, एंड ही वाज लाइक यार रोशी हमारे रिलेशनशिप के लंबे चलने का राज ही है कि जब भी हम हॉलीडे पर इकट्ठे जाते हैं वी आस्क फॉर ट्विन बेड्स, एंड आई वाज लाइक बट स्नगल्स और कडल्स, वो सब जब तुम जाग रहे होते हो बढ़िया मस्त लगता है, उसके बाद जब सोने वाले होते हो ना तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अपना कंबल हो, तुम गैस पास करना चाहते हो, डकार मारना चाहते हो, कंबल अपने पैरों के नीचे दबाकर सोना चाहते हो, इट डजंट रियली मैटर बिकॉज यू आर नॉट अपसेटिंग योर पार्टनर, सो योर पार्टनर एंड्स अप स्लीपिंग आराम से एंड वेक्स अप सेइंग गुजिगू बेबी डॉल। आई एम नॉट श्योर आई लाइक दिस थ्योरी एंटायरली बिकॉज मुझे रात को स्नगल्स बहुत पसंद है, ऑल्दो इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम सिंस दैट हैपेंड, लेकिन आपका क्या विचार है इसके बारे में, ट्विन बेड्स या वन जायंट किंग बेड, जो भी आपका आंसर है हिट मी विद इट ऑन इंस्टा या FB, लेट्स गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू आर एट इट आप लास्ट कब किसी रिलेशनशिप में थे ये भी बता देना, एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
2: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
1: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
1: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
2: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
3: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

बॉलीवुड में कूट कूट के रोमांस भरा हुआ है, आई जस्ट कांट गेट ओवर इट। कवि की कल्पना तो देखिए, इसे गौर से सुनिएगा। इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू हर्ड ऑल डे। सोनी दे नखरे सोने लग दे, सोनी दे नखरे सोने लग दे, कहंदी पॉप अप द जैम, कहंदी ये जाने जाना, कहंदी पॉप अप द जैम। कैन यू इमेजिन दैट? मैं ये गाना पता नहीं क्यों रिविजिट कर रही थी, एंड आई रियलाइज की यार मेरा फोन भी गिर गया इसके बारे में सोच सोच के, किस तरह का गाना है। इमेजिन इफ सम गाय लुक्ड एट मी एंड सैंग दिस सॉन्ग, लाइक हम एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करें, आई एम इन टू द गाय, देन ही लुक्स एट मी एंड सेज ओके अंदी पॉप अप द जैम, आई डू लाइक बोरा दरवाजा निकल यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है दैट यू हैव कम अक्रॉस सम रियली रिटार्डेड लिरिक्स एंड यू आर लाइक बुरे भी नहीं है, मैं गा ही तो रही हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है? अगर हाँ, देन आई डू वॉन्ट टू नो अबाउट योर रियली टेरेबल टेस्ट इन म्यूजिक एंड डज इट एक्सटेंड टू योर पार्टनर्स इज वेल। आपके पार्टनर्स भी आपके गाने की टेस्ट की तरह खराब हैं? हाँ या ना बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE। सो गो अहेड, जानू मानू टू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब फालतू इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने स्कूल में साइंस भी नहीं ली थी. एंड नाउ आई नो कि मुझे ये सब क्यों पता है. क्योंकि एक नई रिसर्च के हिसाब से फॉलिंग इन लव इम्प्रूव्स योर मेमोरी. एंड गिवन हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फॉलन इन लव, मेरी मेमोरी एक एलिफेंट से भी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, विच इन फैक्ट इज अ मिथ. एलिफेंट्स की मेमोरी हमसे कोई बेटर नहीं होती है. ये सब क्या सिखाते पढ़ाते रहते हैं हमें? इस सब से तो बेटर है फॉल इन लव, लर्न इन लाइफ, राइज इन लाइफ. अगर ऐसे ही टिप्स एंड टिक्स एंड फालतू के फैक्ट्स चाहिए आपको, व्हाई डोंट यू हिट मी अप? हम दोस्ती करते हैं और उसके बाद रोज आई विल हिट यू विद Absolutely useless facts like this, that falling in love improves your memory. Mera naam hai Mirchi Roshi. I'm the girl in love with love, obvio, which is why I'm in love so often. Hit me up Insta ya FB par. Let's do friendship. And while you do that, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: The truth is, लोगों से एक गर्लफ्रेंड संभाली नहीं जाती. आपके पास चार चार गर्लफ्रेंड्स हैं इन फोर डिफरेंट सिटीज. एक को पता चल गया ना दूसरे के बारे में, तब आएंगे असली मजे. Did you guess it? It is time for the secret box. Jo bhi hai aapka confession, hit me up on Insta ya FB. Let's get talking. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Aur mere saath line par hai mere mystery caller. Hello, naughty boy.
2: Hello, Roshi.
1: Oh God, you sound hot.
2: Aap,
1: yeah, bol bhi raha. Yeah, thank you so much. Yeah. So, haughty mystery caller, mujhe ye batao ki aapki zindagi mein ek girlfriend hai ya teen char?
2: एक, एक, एक.
1: Nice. For a guy who sounds this hot, I wouldn't be surprised अगर आपकी तीन चार girlfriends हो. लेकिन अगर वो आपकी confession नहीं है तो क्या है आपकी confession?
2: My confession is कि मैं मेरी girlfriend को मिलाने लेके जा रहा था मेरे घर पे. So, मम्मी थी नहीं घर पे. My father was there. So, हम घर पे गए. मैं सारी बातें कर रहे थे. पापा पूछ रहे थे क्या करते हो, क्या कैसे करते हो, क्या सारी चीजें, यही सारी चीजें जनरली जो होती है डिस्कशन. एंड खाए जा रहे थे लगातार लड्डू, खाना, सैंडविच, मतलब लगातार खाए जा रहे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट ही डिड वाज ही फार्टेड. माय फादर फार्टेड.
1: और क्या उन्होंने लाइक लाउड फार्ट किया कि सबको सुनाई दे जाए आपकी?
2: यस, लाउड फार्ट किया. एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट ही डिड.
1: व्हाट?
2: उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपने क्यों फार्ट किया?
1: व्हाट? आर यू सीरियस?
2: डोंट ट्रस्ट मी. यू ट्रस्ट मी प्लीज. And I, it was so embarrassing. Yeah, मैंने कहा यार, how can my father do this to me?
1: Oh my God, तो आपके पापा आपकी girlfriend को impress करना चाह रहे थे तो उन्होंने अपना like fart का blame आपके ऊपर लगा दिया.
2: And that was an embarrassing situation for me to handle.
1: Oh my God.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कई बार जब मैं आपसे बात करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक डायरी एंट्री कर रही हूँ, क्योंकि इट फील्स लाइक आई एम ऑलमोस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. और आज ना एक समथिंग वेरी स्पेशल हैपन टू मी व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू, बिकॉज शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा. प्यार तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशन है. अगर आपकी जिंदगी में प्यार है देन ऑनेस्टली एवरीथिंग इज सॉर्टेड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. लेकिन उससे एक थोड़ा सा छोटा इमोशन है. इट्स नॉट एन इमोशन, इट्स एक्चुअली अ थिंग व्हिच इज रिस्पेक्ट. जब आपकी जिंदगी में कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली इन अ वेरी क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप, तब उस रिलेशनशिप के मायने कितने गहरे हो जाते हैं ना. आई नोटिस टुडे हमारे ऑफिस में एक कॉलीग है, ही एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट नाउ 6-7 साल हो गए हमें. और आज हमें कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और भी लोग थे उस कॉन्वर्सेशन में, बट वेन ही वॉज टॉकिंग टू मी आई रियलाइज कि एज क्रिएटिव टैलेंट, और क्योंकि वो खुद बहुत टैलेंटेड इंसान है, ही काइंड ऑफ offered a lot of respect to me in that conversation. And that's when I realized ki kahin na kahin, when in that conversation, he was actually...

0: Milci.
1: Iz kabana, uz kabana, sa kabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता हूँ,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन।
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार,
3: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यहाँ तू मजे ले रहा
4: फोन करके। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पका। लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट। न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi.
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलाम मोहम्मद कासिर नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो बढ़िया सी स्माइल दीजिए, उसके बाद ये जो हम गाना सुनने वाले हैं नाइट इन लंदन का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में, इस गाने का वीडियो देखिए। अगर आपको 60s वाला लंदन देखना है, बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। इनफैक्ट जब मोहम्मद रफी साहब इस गाने की शुरुआत करते हैं ना ओ माई लव से, उससे पहले जो गिटार बज रहा है वो इस गाने के वीडियो में एक नाव पे बैठा गोरा बजा रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात
3: कौन
4: सुन,
3: बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रहा, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है निकल तू,
3: चल जा, चल जा।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
7: हेलो
8: हेलो,
7: कौन?
8: हेलो विपिन,
7: कौन बोल रहा है?
8: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
7: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
8: आहिस्ता बोलो, कब अप्लाई किया था आपने?
7: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है
8: भाई, मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात, और तुम स्पीकर फोन पे हो, जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
7: पहले किया था।
8: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
7: ऑनलाइन की थी।
8: भैया आहिस्ता बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
7: जाना जरूरी है?
8: कहाँ जा रहे हो?
7: दुबई।
8: अच्छा तो दुबई जाना है
7: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
8: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
7: हाँ ठीक है,
8: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
7: आपने सही कह रहे
8: हैं। तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
7: नहीं बोलना।
8: भाई साहब एक बात बताऊं?
7: बताओ।
8: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
7: मैं तो पागल है क्या?
8: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
7: करवा देना भी है आपसे।
8: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
7: सॉरी।
8: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा, हैव अ सेफ फ्लाइट।
7: ओके।
8: आई लव यू टू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: ये पगला।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
12: पूरा
0: पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन

पुरानी फिल्में जिनकी शूटिंग अब्रॉड में हुई है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली शॉर्ट फिल्म्स इज इवनिंग इन पेरिस। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, एंड द क्रेडिट गोज टू फिल्म के सिनेमाटोग्राफर गोपी कृष्ण। डायरेक्टर शक्ति सामंता को भी क्रेडिट जाता है। इनफैक्ट ये ना सुनने में आता है कि पेरिस में इस फिल्म की शूटिंग के लिए शक्ति सामंता सिर्फ 10 लोगों को लेके गए थे, क्योंकि तब पेरिस जाके शूटिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी भाई। और ये भी सुनने में आता है कि जो जो लोग इस यूनिट में शामिल थे ना 10 लोग, उनको जो पेमेंट की गई थी वो काफी कम थी। क्या पेरिस घुमा दिया ना, पैसे काहे को मांग रहे हो। अच्छा, इसका जो टाइटल ट्रैक है ना, एन इवनिंग इन पेरिस, ये फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स का सॉन्ग है। तो कई लोगों के साथ उस टाइम ऐसा हुआ कि जो थिएटर लेट पहुंचे उन्होंने गाना मिस कर दिया, तो उन्होंने दोबारा से मूवी देखी वो गाना देखने के लिए। मस्त पेरिस की गोरियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं शम्मी कपूर साहब इस गाने में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। अजी ऐसा

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

अफ्रीका में हिंद, ये एक फिल्म का नाम है, आपको पता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1939 की ये फिल्म है जिसकी शूटिंग अफ्रीका में हुई थी। तो वैसे अगर आप सोचें तो बाहर अब्रॉड में शूट होने वाली पहली फिल्म इसको माना जाएगा, हिंदी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। फिर 1954 की एक फिल्म नाज भी थी जिसकी शूटिंग अब्रॉड हुई थी, लेकिन जो फिल्म जिसकी शूटिंग एक्सटेंसिवली अब्रॉड हुई थी, यूरोप में हुई थी, वो थी संगम। फिर जिसने बाद में ट्रेंड भी चलाया था बाहर जाके फिल्में शूट करने का, या यू नो वो वाली फिल्में जो आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंडन, लव इन टोक्यो। इनफैक्ट लव इन टोक्यो में ना आशा पारेख जी ने कुछ हेयर क्लिप्स यूज की थी, उनको बाद में लव इन टोक्यो हेयर क्लिप्स नाम से जाना जाता था। और इस फिल्म के इस गाने के ऑडियो में जापान का फ्लेवर तो है ही, इसके वीडियो में भी है। यस, इसके वीडियो में आपको 1960s का टोक्यो जापान देखने को मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

जैसे लव इन टोक्यो, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, और ये ट्रेंड एक्चुअली जिस फिल्म ने शुरू किया था ना, उसके नाम में किसी बाहर के शहर का नाम नहीं था, लेकिन इसकी शूटिंग काफी एक्सटेंसिवली यूरोप में हुई थी। दिस मूवी वॉज संगम, मतलब 1964 की फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कपल अपने हनीमून के लिए यूरोप जा रहा है, क्या बात है। पर अभी जो हम इसका गाना सुनने वाले हैं, वो तो अपना यहीं ऊटी में ही शूट हुआ था। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग रिटन बाय हसरत जयपुरी, कंपोज बाय शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पर ये गुल जो खिले थे ये कौन से गुल थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ट्यूलिप्स हैं। तो इस गाने के कुछ हिस्सों की शूटिंग नेदरलैंड्स के लिस्सा शहर के केओकेनहॉफ गार्डन्स में हुई थी ना, जहाँ के ट्यूलिप्स दिखाए गए हैं। भाई दुनिया का ये बहुत ही बड़ा बगीचा है, 32 हेक्टेयर के एरिया में, और कुछ 7 मिलियन फूल यहाँ पे उगाए जाते हैं। इस जगह पे शूट करने का सजेशन यश चोपड़ा साहब को खुद अमिताभ बच्चन साहब ने दिया था, बिकॉज शूट से 1 महीना पहले ही वो वहाँ पे घूम के आए थे। क्या बात है भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बगीचे। इसी बात पे सुंदर सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Hello.
3: Hello.
2: हाँ जी
3: विवेक जी.
2: हाँ जी बताइए.
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
2: क्या है? ऑफकोर्स
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
2: ठीक ही कह रहे हो.
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने. अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखूंगा,
3: थोड़ा ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे.
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार आपकी बात, क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार.
3: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की.
3: अच्छा अच्छा.
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
3: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत.
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यार तू मजे ले रहा फोन करके.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पगला.
0: पुरानी जींस विद चारू, ओनली

पुरानी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डायनामिक वाइब्रेंट मेन फिरोज खान साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बंदे ने हिंदी फिल्मों में फॉर्मूला वन कार रेसिंग इंट्रोड्यूस की थी 1972 की फिल्म अपराध में। जर्मनी में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि द फर्स्ट फिल्म टू गेट शॉट इन अफगानिस्तान वाज खुदा गवा। नो नो नो नो नो, पहली हिंदी फिल्म जो अफगानिस्तान में शूट हुई थी वो थी 1974-75 की धर्मात्मा। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी जी अफगानिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गई थी। उनकी एक झलक पाने के लिए अफगानिस्तान का पट्टा आने से तरसता था। वो वैसे इतनी सुंदर थी यार, ऊपर से उनका जो एक कैरेक्टर दिखाया गया था रेशमा इस फिल्म में, वो अलग ही गजब धारा था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

पुरानी फिल्में और गाने जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो 1970 की पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, पिक्चराइज्ड डॉन मनोज कुमार एंड सायरा बानू, ये आपको पता है इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शूट हुआ था। अनदर फिल्म 1970 की प्रेम पुजारी, जो कि देवानंद साहब की फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर थी, उसका गाना फूलों के रंग से वॉज शॉट इन स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट आप जब ये गाना देखो तो उसमें बैकग्राउंड में स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस होटल ग्रिम्सल होटल भी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पे ये गाना ही मिल सकता है सुनने को पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

भाई वैसे तो हिंदी फिल्मों में एक्सटेंसिवली फॉरेन लोकेशंस पे शूट करने का ट्रेंड संगम फिल्म ने शुरू किया, लेकिन और भी बहुत सारी फिल्में थी जो उससे पहले फॉरेन लोकेशंस पे शूट हो चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता बिकॉज इतनी ज्यादा वहाँ पे शूटिंग नहीं हुई थी और वो फिल्में चली भी नहीं थी। जैसे 1960 में शम्मी कपूर साहब एंड पद्मिनी की एक फिल्म आई थी सिंगापुर, जिसका गाना शूट हुआ था सिंगापुर में। फिर 1962 में हांगकांग नाम की एक फिल्म आई थी और उसमें बकायदा बीच साइड पे एक पार्टी चल रही है उस टाइप का एक गाना है जो हेलन जी पे पिक्चराइज्ड है, हांगकांग चीना मीना सिंगापुर ऐसा कुछ गाना है वो। चलिए यहाँ पे हम एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड का ही जिक्र हो रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची, जहाँ पे दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड का ही जिक्र हो रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

फॉरेन लोकेशंस में शूट हुई हिंदी फिल्में और हिंदी गाने पुराने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जिसके कुछ पार्ट फॉरेन लोकेशन पे शूट हुए थे, ये थी 1960 की फिल्म कॉल्ड बेवकूफ, जिसमें किशोर कुमार एंड माला सिन्हा थे। इसकी कुछ शूटिंग इटली में हुई थी। ऑल्सो माला सिन्हा एंड धर्मेंद्र स्टारर आंखें फिल्म जो थी, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी, 1968 की सुपर हिट फिल्म। पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग अगर बेरूट में हुई थी तो वो इस फिल्म की। इनफैक्ट इसका जो गाना है दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जिसमें फिल्म के तीन किरदार भिखारी बन के घूम रहे हैं सड़कों पे, वो बेरूट की सड़कें हैं। इस फिल्म की शूटिंग जापान में भी हुई है। बट इसका एक और गाना है जो बहुत सुंदर है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, रवि की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
4: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
4: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
4: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात सुन,
4: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
4: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
4: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या, किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
4: अरे तो जब डर गया था, तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
4: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
4: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
4: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
4: वाली बातें कर रहा,
3: मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
4: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
4: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
4: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
4: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
4: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
4: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
4: चल जा, चल काम कर, चल।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला,
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

One of the most iconic Hindi song ever shot on a foreign location is undoubtedly Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani. Mirshi sun rahe aap Purani Jeans par main hu Charu aapke saath. Chalo gaane ki video mein Italy mein Venice mein gondola ride hai bahut sundar hai jisko by the way film ke director Shakti Samanta ne khud shoot kiya hai unke kisi assistant ya cinematographer ne nahi. To video to bahut badhiya hai lekin jis tarah se iske audio mein wahan ki tune wahan ke lyrics ko include kiya gaya hai na that is so beautiful. Hats off to R.D. Burman. आशा भोसले जी का ये उनका गाया हुआ फेवरेट गाना. कमाल तो लिखा ये आनंद बख्शी साहब ने. और आपको पता है इसमें शुरुआत का जो वो लाला लाला वाला वोकल्स है और वो जो इटालियन में गा रहे हैं वो एक्चुअली एक इंडियन ने गाया है. उनका नाम है शरद कुमार. तो सुन लेते हैं दिस ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची.

0: वेश साई तू ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only.

भाई यश चोपड़ा साहब ने स्विट्जरलैंड की लोकेशंस को इतना पॉपुलर बना दिया कि ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ही वहाँ पे हिंदी फिल्मों की या गानों की शूटिंग की शुरुआत की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली हिंदी फिल्म जिसकी स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई थी वो थी 1964 की संगम। यश चोपड़ा साहब की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी वो थी 1985 की फासले। बट जिस फिल्म से यश चोपड़ा वाला स्विट्जरलैंड पॉपुलर हुआ वो थी 1989 की चांदनी। और इस पर्टिकुलर गाने को जो शूट किया यश चोपड़ा साहब ने, ये वादियों में बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के जो सारी की सारी ये लेगेसी जो है इसकी शुरुआत इसी फिल्म से तो हुई थी। श्रीदेवी ने जो साड़ियां पहनी है वो क्या लगी है भाई, कमाल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 1964 की मूवी संगम वो पहली फिल्म थी जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो अगर ट्रेंड सेटिंग की बात करें ना कि जिसने फॉरेन लोकेशंस को ऐसे पॉपुलर बना दिया, देन यस दिस वॉज द फिल्म। इसी के बाद वो सारी फिल्मों की झड़ी लग गई थी ना, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंडन, लव इन टोक्यो, अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अगर इससे पहले की हम बात करें तो काफी मूवीज थी जिसके कुछ पोर्शंस या गाने फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए थे। जैसे एक तो पूरी फिल्म थी 1939 की अफ्रीका में हिंद, ये पूरी की पूरी अफ्रीका में शूट हुई थी। फिर 1954 की एक नाज नाम की फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार थे, इसके कुछ पोर्शंस इजिप्ट में शूट हुए थे। देन 1960 में बेवकूफ नाम की फिल्म जिसमें किशोर कुमार माला सिन्हा थे, वो इटली में उसका कुछ पोर्शन शूट हुआ था। फिर 1960 की सिंगापुर, फिर 1962 की हांगकांग। और इनमें से काफी फिल्मों में ना ऐसा भी होता था कि यूनिट के जिन लोगों को फॉरेन ले जाया जाता था उनको उनकी कोई अलग से पेमेंट नहीं होती थी, या होती थी तो बहुत कम होती थी, कि बोलते थे तुमको अभी विदेश घुमा दिया, अभी और पैसे काहे के मांग रहे हो। चलिए जहां मैं यहां वहां से अब रंगून चलते हैं गाने में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू, हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: जो सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: हरकत ने ही बरकत दी है क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोल को समझना हमारी इनर पीस और लाइफ पर्पस के लिए इतना जरूरी क्यों है, आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक अनोनमस सवाल आया है, कहते हैं कि कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जाकर भूत प्रेत दूर हो जाते हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या ये कोई आध्यात्मिक शक्ति है, कृपया इस बात को समझाएं।
4: इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा जो ये इतना भूत प्रेत कहते हैं ये होता क्या है। सी बेसिकली अगर आप सोल है, बॉडी का कॉस्ट्यूम लेकर के कर्म करती है
3: जी,
4: उसके बाद कभी कभी कॉस्ट्यूम बॉडी छोड़ती है और दूसरा कॉस्ट्यूम लेती है
3: जी,
4: पर कभी कभी जब तक उसको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम नहीं मिलता है
3: तो भटकती रहती है,
4: जिसको हम कहें भटक रही है माने उसके पास कॉस्ट्यूम नहीं है। वो सोल को कुछ भी करने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए, शरीर रूपी गाड़ी चाहिए कुछ भी करने के लिए। अगर उसके पास वो शरीर रूपी गाड़ी नहीं है तो उसको उस समय पर सफरिंग होती है। आपको कुछ भी करने के लिए, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको ये कॉस्ट्यूम चाहिए ही, वरना ड्राइवर है उसके पास गाड़ी नहीं है तो क्या करेगा, वो काम नहीं कर सकता। और जब तक आपके पास वो बॉडी नहीं है तो आप उस चीज को सफरिंग, जो भी हम कर्म करते हैं उसको सेटल करने के कई तरीके होते हैं। जब हमारे पास कॉस्ट्यूम होता है तो भी गलत कर्म कई रूपों से सेटल होते हैं, जिसमें कोई धन का पेपर है, तन का पेपर है, मन का पेपर है। दूसरा लेवल सफरिंग का होता है जब आपको ये कॉस्ट्यूम ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं भटक रहे हैं। तीसरा यहाँ तक भी होता है जिसको हम कई बार कहते हैं ना, ये उसमें प्रवेश कर गया। अगर किसी के साथ आपका ऐसा बहुत ही खराब कार्मिक अकाउंट है, कोई अशुद्ध विकर्म किए हुए हैं इस प्रकार से, तो भी वो सेटल करने के लिए कई बार आत्मा किसी में प्रवेश कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये ऐसा होता है कि कार की सीट पर एक ही ड्राइवर बैठ सकता है, वहां पर अगर दो बैठे
3: तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी।
4: पर वो भी एक फॉर्म ऑफ सफरिंग होती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा को अगर उसने गलत कर्म किए हैं तो उसको वो चीज सेटल करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से ये होता है, उसको हम घोस्ट नाम दे देते हैं। है कुछ नहीं, वीक सोल है जो सफर कर रही है और कई बार सेटल करने के लिए किसी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। नाउ किसी स्थान में इतनी शक्ति है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल जगहों की जो प्योर एनर्जी होती है उस प्योर एनर्जी में वो सफरिंग कम होती है, उसको राहत मिलती है, अकाउंट जल्दी सेटल होता है और आपको थोड़ा सुकून मिल सकता है उस चीज का जल्दी। है सफरिंग और कुछ नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या प्यार में चिंता और केयर किसी रिश्ते की मजबूती का प्रतीक हो सकती है? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मुझे याद है कुछ दिनों पहले ना मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, और उस समय मैं घर पे अकेला था। मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो मायके गए हुए थे, और मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता था, तो मैंने उनको बताया नहीं। अब क्या हुआ कि मैंने अपने जो दोस्त वगैरह हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी नहीं बताया इसके बारे में, वरना वो बेकार में परेशान होते, इधर उधर फोन करते, और मैं चाहता नहीं था कि बात बाहर निकले, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं बेड रेस्ट पे था और कोई अपना काम नहीं कर पा रहा था। अब हुआ क्या, कुछ दिनों बाद जब उनको पता चला कि ऐसा हुआ है, तो जो रिएक्शन मुझे मिलने लगे वो ये नहीं थे कि भाई आप कैसे हो, पैर ठीक हो गया, सब ठीक है ना। वो रिएक्शन थे, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम हमें अपना भी नहीं समझते। और मैं सोच रहा हूँ कि यार पैर तो मेरा टूटा था, और सडनली वो जो मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान था, तुम मेरे हो ही नहीं, तुम अपना मुझे समझते ही नहीं हो, ये मैं संभाल लूंगा, जो मेरी जो प्रतिक्रिया थी या जो मेरा फर्स्ट थॉट था वो उनके लिए तुम हमें अपना समझते ही नहीं, कैसे उसमें कैसे तब्दील हो गया।
4: जब उनका ये रिएक्शन आया तो उस चीज ने आपको तकलीफ दी?
3: नहीं, मैंने कहा अरे क्या हो गया, मैं तो
4: नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके रिएक्शन ने
3: नहीं, मुझे तकलीफ नहीं। मैं उनको बोल रहा था अरे भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं परेशान नहीं करना चाहता था आपको, सब कुछ ठीक था।
4: क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हम अपना जीवन बिल्कुल वैसे जीते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरे जब वैसे जीते हैं जैसे वो जीना चाहते हैं तो वो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। हमें लगता है इनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इनको तो सपोर्ट करना चाहिए था। उनको लगता है इनको तो बताना चाहिए था, इनको छिपाना नहीं चाहिए था।
3: बिल्कुल।
4: सो एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू लिव लाइफ देयर वे। ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हमें वो करना है जो हमारे लिए
3: सही है,
4: कंफर्टेबल है, लेकिन उसके बाद ये नहीं सोचे कि सारी दुनिया आपको उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस दे। अगर आपको उनसे एक्सेप्टेंस चाहिए तो आप वो करना शुरू करें जो उनको कंफर्टेबल है। अगर आपको ये सुनना है कि हम आपके हैं, तो फिर आप अगली बार बीमार हो तो पहले कॉल करके उनको बताना। इट इज अ चॉइस। आपको अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो आपको उनके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: परिवार के बुजुर्ग अक्सर कुछ बातें अपने दिल में छुपाकर क्यों रखते हैं, आइए इसके पीछे की भावना को समझें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: बचपन में हमने कबीर के दोहे भी बहुत पढ़े थे, और मेरे जो पिताजी हैं वो इस तरह के, वो किसी को भी किसी भी चीज के लिए तकलीफ नहीं देते, तो वो हम देखते आए हैं। तो धीरे धीरे जो आप देखते हैं वो आप सीखते हैं और वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। और कबीर का एक बहुत शानदार दोहा है कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही रखो होए, सुनी अठिले लोग सब बाटी ना लेहे कोए। इसका मतलब यह है बेसिकली कि जो तुम्हारी मन की व्यथा है वो अपने तक ही रखो, लोगों को बताओगे तो हंसी ठट्टा ही करेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे, और आपका दुख कोई बांटेगा नहीं। तो मेरा जो इसमें इंटेंट था वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं थी।
5: इससे भी ज्यादा इसके अंदर बहुत डेप्थ है। क्यों लोग पहले कहते थे कि हर चीज छिपा के रखो, धन है वो भी छिपा करके रखो, कोई प्रॉब्लम है वो भी छिपा करके रखो, कोई घर में बड़ी बीमारी है वो भी छिपा करके रखो। क्यों? आप जितना उसको बताते हैं, जितना वो औरों तक पहुंचता है, आप एक एनर्जी अपनी तरफ इनवाइट करेंगे।
4: बिल्कुल,
5: जिस जिस को पता चलेगा हाँ। वो कुछ सोचेगा
4: हाँ, अरे
5: धन के लिए भी कहते थे उसको छिपा के रखो हाँ। क्योंकि कोई खुश होगा, कोई जलस भी होगा,
4: बिल्कुल
5: बीमारी के लिए भी आप बताएंगे हाँ। किसी के मन में सपोर्ट भी होगा
4: हाँ।
5: कोई इस प्रकार से भी सोचेगा, अरे इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, भगवान ने इनके साथ बहुत बुरा किया, इनके साथ तो नहीं होना चाहिए। अब आप ऑलरेडी किसी चीज से गुजर रहे हैं, फिर वो जो सारी एनर्जी है उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। पर्सनली आई फील ऑफकोर्स जो बहुत नियर फैमिली है वो गलत नहीं सोचती है, वो आपको सपोर्ट करेगी। तो उनको समझते हुए आप कुछ बताते हैं और मिल करके करते हैं वो जरूरी है। लेकिन बाकी अगर कोई बीमारी है या कोई दुख है वो बहुत ज्यादा औरों तक उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सच बात है। वो क्या ही कर सकते हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे, कोई मजाक उड़ाएंगा, बाकी तो उस चीज को फेस आपको ही करना है। इसलिए उन चीजों को छिपा के रखने में ही भलाई है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अगर प्रोफेशनल स्पेस में कोई आपको इमैच्योर कहे तो उस सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ कैसे हैंडल करें?

0: आइए जानते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: सिस्टर, मुझे ना बचपन में कॉमिक्स का बहुत शौक था, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं स्कूल जाता था तो टेक्स्ट बुक खुला होता था लेकिन उसके अंदर एक कॉमिक होती थी, और जैसे ही टीचर आते थे तो वो कॉमिक गायब और ज्योग्राफी की किताब खुल जाती थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाल फिलहाल में मेरी एक दोस्त है जिससे मैं बात कर रहा था, उसको भी ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक्स का बहुत शौक है। उसका हाल फिलहाल में अप्रेजल हुआ, वो करीब 40-45 साल की है, और वो कहती है कि मेरे अप्रेजल में बड़ी अजीब चीज हुई। मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो और बहुत डिपेंडेंट हो, तुम्हारी टीम भी तुमसे बहुत खुश है, परफॉर्मेंस तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम बहुत इमेच्योर हो। तो वो कहती है क्यों? कहते नहीं, मैंने देखा है तुम ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ती हो, तुम कॉमिक्स पढ़ती हो, परियों की कहानी फेरी टेल्स पढ़ती हो, तो आई कैनॉट ट्रस्ट अ पर्सन हु सो इमेच्योर। एंड शी वाज एब्सोल्युटली मतलब गॉबस्मैक्ड, उसको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो वो मुझे बोल रही थी और मैं सोच रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको किसी चीज से खुशी मिलती है उसका जो रिएक्शन दूसरों का होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट क्यों करे?
3: नहीं करना चाहिए। इफ देयर इज समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, इट्स इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट, वो कंटिन्यू करना चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू परफॉर्म वेल।
2: यस,
3: सिर्फ उसके लिए कि दूसरा आपके लिए सही नहीं सोच रहा है या कुछ सोच रहा है, उसके लिए नहीं छोड़ना चाहिए। सी आई ऑल्सो फील कि हमें अपनी लाइफ को वैसे डिजाइन करना चाहिए जो वो लाइफ आपको खुशी भी दे, सिर्फ कम्फर्ट दे, मनी दे, पोजिशन दे, नहीं। A lot of smart people are not happy, which is very sad. So it is not only important कि आप professionally अच्छा कर रहे हैं, materialistic level पर अच्छा कर रहे हैं, आप खुश होने जरूरी हैं। और अगर ये कुछ चीजें आपको खुशी देती हैं और किसी को immature लगती हैं, तो मुझे लगता है नहीं छोड़ना चाहिए, continue करना चाहिए।
4: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, अनोनिमस है, लिखते हैं कि आत्मा का सफर एक युग से दूसरे युग में कैसे होता है।
3: उसके लिए पहले हमें युग समझना पड़ेगा, जिसमें हम कई बार कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, विच मीन्स गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। अब ये जो परिवर्तन होता है, एक है दुनिया का परिवर्तन, वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन। विच मीन्स कि जब आत्मा अपनी जर्नी शुरू करती है, सोल जब जर्नी शुरू करती है, जब सोल परफेक्ट है तो वर्ल्ड भी परफेक्ट
2: होगा, राइट।
3: हमें लगता है दुनिया बदलती है इसलिए हम बदल जाते हैं, दुनिया ऐसी है ना इसलिए मैं ऐसा हूँ,
2: उल्टा होता है।
3: उल्टा होता है, जैसे जैसे सोल की प्योरिटी कम होती जाती है
2: तो हमारे आसपास भी चीजें बदलने लगती
3: है, वो वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा
2: जी।
3: तो जब सोल अपने सफर में आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे ये भूलने लगती है कि मैं सोल हूँ और अक्वायर्ड चीजों से आइडेंटिफाई करने लगती है, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो लेबल्स है, चाहे वो, तो उसकी ईगो डेवलप होने लग जाती है। फिर जहाँ ईगो है, अटैचमेंट है, एंगर है, उसके कारण उसके जो कर्म है, वो जो पहले सत्कर्म थे, वो कोई सत्कर्म होंगे, कोई विकर्म होंगे, और इसीलिए धीरे धीरे सत्युग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। तो कलयुग आया इसलिए हम बन गए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी प्योरिटी कम होती गई, हम बॉडी कॉन्शियस होते गए, हमारी ईगो अटैचमेंट बढ़ती गई, हमारे से कर्म ऐसे होते चले गए, इसीलिए कलयुग आ गया है। तो ये आत्मा का सफर है, आत्मा पुनर्जन्म लेती जाती है और जितना डिप्लीट होती जाती है तो दुनिया भी उसके साथ डिप्लीट होती है, इसीलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा।
2: वाह, क्या बात,
3: विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन।
2: सो ब्यूटीफुल एक्सप्लेन्ड। आपके बातों से मुझे एक फ्रेंच साइंटिस्ट फिलोसोफर है, उनका नाम मुझे याद नहीं, पेर कुछ नाम उनका है, तो उन्होंने कहा था, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस।
3: एब्सोल्युटली।
2: और आप जो कह रही हैं कितनी खूबसूरती से आपने समझाया है। और एक और चीज मुझे याद आया कि आशुतोष राणा बहुत कमाल तरीके से ये समझाते हैं, जो आपने कहा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, तो कहीं मौका मिले तो जरूर आप वो देखें, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझाते हैं, जैसा कि आपने समझाया।
3: कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी, आपकी जो रियलिटी है वो कॉन्शियस
2: वही बाहर रिफ्लेक्ट होती है।
3: तो जब आत्मा प्योर है
2: तो सब कुछ प्योर होगा, सही रहेगा।
3: देवी देवताओं के लिए क्या कहते हैं, सतयुग में हम कहते हैं देवी देवता थे
2: जी।
3: पर देवी देवताओं की जो क्वालिटीज है उसमें क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न,
2: बिल्कुल,
3: सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मतलब वो जो सोल है वो 100% है, प्योर है, उसके अंदर हर प्रकार की क्वालिटीज है, 100% प्योरिटी है, कोई वायलेंस नहीं है, तो दुनिया भी सतयुग है
2: जी, बिल्कुल।
3: और फिर नीचे उतरते उतरते क्योंकि विकारों के वश हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
2: तो धीरे धीरे उनका पतन होने लगता है,
3: तो धीरे धीरे कलयुग। फिर धर्म स्थापक आकर के कहते हैं, आप सतयुगी बनेंगे तो सतयुग अपने आप आ जाएगा।
2: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ,
5: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
4: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ,
5: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ,
6: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ,
7: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
4: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि सुप्रीम सोल क्या है।
3: सुप्रीम सोल माना सोल
2: जी,
3: आत्मा। सुप्रीम सोल माना परमात्मा।
2: परमात्मा जी।
3: तो जैसे हम कहते हैं शरीर का पिता है, ऐसे आत्मा का पिता, उसको आप सुप्रीम फादर कहें, सुप्रीम सोल कहें, गॉड फादर कहें, भगवान अल्लाह ईश्वर कहें
2: जी।
3: पर सुप्रीम का मतलब है कि वो क्वालिटीज में सुप्रीम है।
2: जैसे अगर हम उसमें सारे हैं,
3: हाँ, जैसे अगर हम सोल के लिए कहेंगे कि उसकी जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति है, शक्ति है, प्रेम, आनंद, खुशी है, तो परमात्मा के लिए हम कहते हैं वो शांति का सागर है।
2: हाँ, बिल्कुल,
3: वो शक्तियों का भंडार है। और इसीलिए जब सोल डिप्लीट हो जाती है, जैसे आपका फोन है उसकी बैटरी डिप्लीट हो गई
2: तो चार्ज करना,
3: तो आप पावर हाउस से उसको कनेक्ट करेंगे तो वही करंट फ्लो होगा। ऐसे ही आपका भी ओरिजिनल नेचर शांति है, पर अगर आप डिप्लीटेड फील कर रहे हैं तो आप जब शांति के सागर से कनेक्ट करते हैं तो आप उसी शांति को एक्सपीरियंस करेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hosting the best diamond jewelry on Oak Tree Road, Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है ये। वो लिखती हैं कि सिस्टर क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया, वगैरह वगैरह।
3: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रांग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहाँ लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
2: जी,
3: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
2: जी,
3: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
2: हाँ।
3: कह रहे हैं मेरा मन।
2: हाँ।
3: मेरा मन कहते, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते हैं।
2: हाँ।
3: तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
2: हाँ।
3: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
2: सही बात है।
3: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
2: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है।
3: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं। दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
2: जी,
3: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कंसंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
2: सही बात है।
3: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
2: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो होगा ही।
3: हाँ, मैंने जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
2: सही बात है,
3: बहुत अच्छा है,
2: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी हो,
3: ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, द माइंड डजंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस,
2: राइट,
3: दैट्स व्हेन थोड़ी देर के बाद वो उस प्रोसेस करने में चला जाता है।
2: सही बात है।
3: जो आपने सुना है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में चला जाता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है, थोड़ा मी टाइम निकालना चाहिए टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने कुछ कहा। कोई चीज अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अगर उसको एनालाइज करके, उसको वर्क करके, उसको क्लोजर नहीं देते
2: तो चलता रहेगा,
3: तो वो चलता रहेगा, फिर वो पास्ट बन जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि 80% टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट को नहीं किया।
2: जी।
3: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने हीलिंग नहीं करी। सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम। दिस इज जस्ट अ बज वर्ड, मी टाइम। है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ। कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग।
2: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं।
3: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे हैं।
2: हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है।
3: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना, आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं।
2: मन थका हुआ है।
3: थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है।
2: सही कह रही।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सिस्टर। गुड मॉर्निंग। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल दिया। कुछ मैंने भी गलत बोल दिया, कुछ उसने भी गलत बोल दिया। वो हर्ट हो गई है और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी और के फोन से किसी तरह उससे बात हुई तो बोलती है कि एक साल वेट करो। अभी हम दोनों अलग रह रहे हैं। मेरा घर टूटने से मैं बचा सकूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज हेल्प मी।
3: इसीलिए हम कई बार कहते हैं, अगर गुस्सा आ भी जाए ना, बोलना नहीं चाहिए। बोलने में क्या होता है, आपने फिर रियलाइज किया, आपने अपोलोजाइज भी कर लिया। सामने वाला जब बहुत कमजोर होता है तो उसको पकड़ लेता है, रिपीट करता रहता है, हर्ट क्रिएट कर लेता है, ब्लेम आपको करता है। एक्चुअली उस व्यक्ति ने तो एक बार कहा, फिर सॉरी भी कह दिया, तो बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक उसकी नहीं है। पर अगर कोई इमोशनली वीक है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। वही चीज रिपीट करता रहता है और जख्म बना लेता है। अब उन्होंने जख्म बना लिया, आपने सॉरी भी कह दिया। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके जख्म, हर जख्म हील होता ही है। कोई समझ से हील होता है, कोई समय से हील होता है।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई नॉलेज से, कोई टाइम से,
3: होना तो समझ से चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक साल वेट करो? जो चीज एक साल में ठीक करनी है वो एक सेकंड में भी ठीक हो सकती है। एक साल में तो वो जख्म और गहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी वो उनके ऊपर है। समझ तो क्या कहती है, मेरी साड़ी पे दाग लगा, मैं एक साल बाद थोड़ी ना धोऊंगी। दाग लगा है ना, तो हम तो चाय भी कप रख करके कहेंगे पहले धोए फिर पियेंगे, नहीं तो ये गहरा हो जाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो समझदार तो क्या करेगा, अच्छा हो गया ना, फुल स्टॉप। मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फुल स्टॉप। बात करना शुरू करो, गांठ को तोड़ करके फेंको। लेकिन अगर समझ नहीं है तो समय हीलिंग करता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर कहते हैं। टाइम हीलिंग कैसे करता है, वो चीज मर्ज होने लग जाती है। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सीन्स लाइफ की होती है, तो वो पीछे वाले का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं उनके लिए। आप उनको अच्छा वाइब्रेशन भेज सकते हैं। आप परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आप उनको सेंड कर सकते हैं, जो उनकी हीलिंग फास्ट करेगा। तो आप डेडिकेटेड टाइम फिक्स करें, 10 मिनट्स 15 मिनट्स। आप मेडिटेशन में बैठे, उस मेडिटेशन में आप बोलें कि मैंने आपको दुख दिया, मेरा भाव नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं परमात्मा से हीलिंग एनर्जी लेकर आपको भेजता हूँ, क्योंकि मेरी भावना है कि आप खुश रहे।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
3: मेरे लिए आपकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस अभी इतना ही चाहता हूँ कि आप खुश रहे, ये मेरी अंदर की शुभ भावना है। मॉर्निंग इवनिंग आप ये करते जाए, आपका वाइब्रेशन उनको हील करेगा। और वो हीलिंग हो जाएगी तो वो जितना समय लगना उससे बहुत कम समय में वो ठीक हो जाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो, अलार्म क्लॉक और हमारे घर वालों में एक ही डिफरेंस है। अलार्म क्लॉक को स्नूज किया जा सकता है, लेकिन घर वालों को नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, जो कि ऑफिशियली शुरू हुआ है। यहाँ पर कॉफी से पहले गॉसिप और चाय से पहले थोड़ी चटपटी बातें होती है, जो कि आज हम करने वाले हैं। अगर तुम अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हो, या फिर सबवे पकड़ रहे हो, या फिर अपने लैपटॉप को खोलकर खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रहे हो, या फिर परौंठे पलट रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में रहने वाले हो अगले कुछ घंटों तक। वैसे एक बात बताऊं, देसी लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन सुबह सुबह का पहला थॉट तो सेम ही होता है, बस 5 मिनट और। और अगर तुम भी आज इसी थॉट के साथ उठे हो, तो फटाफट से मुझे बताओ तुम्हारा सुबह उठने का रूटीन क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, आई एम टॉकिंग अबाउट उठने के लिए क्या रिचुअल्स तुम्हें करने पड़ते हैं कि फाइनली बेड से उतर जाओ, अपने कामकाज से लग जाओ। और आर यू लाइक सुपर एक्टिव, आँख खुलते ही बेड से उतर जाते हो और वर्कआउट करने लग जाते हो। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे इंस्टा और एक्स पर तुम डीएम कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Cabana, Burga, Burga, la Virpa, la Burga,
2: Mirchi, Burga.
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी
3: हाँ जी बताइए
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
3: या ऑफ कोर्स
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मजे अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो मैं ध्यान रखता
4: हूँ ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन हा?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
4: क्या हुआ क्या था भाभी से यार आपकी बात क्या हो गई थी
3: अरे कुछ नहीं यार
4: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखों की आवाज है क्या हुआ क्या था
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की
4: अच्छा अच्छा
3: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
4: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
3: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत
4: आप कह रहे हो चिल्लाई चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
3: मजे आ रहे हैं
4: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
3: अरे तो मजा आ रहा है यार तू मजे ले रहा
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं मुर्गा बना रहा था आपके
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ
18: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ
19: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ
16: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਯੈਸ ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1 ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1
7: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना
0: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49 ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th
11: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा
20: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो अब रिवाइंड मारते थोड़ा सा। सबसे पहले 1855 झारखंड में संथाल रिबेलियन शुरू हुई। सिद्धू एंड कानू मुर्मू ने हजारों लोगों के साथ ब्रिटिश रूल और जमींदारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। ये इंडिया के अर्लिएस्ट ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम मूवमेंट में से एक माना जाता है। फिर 1859 में इमेजिन दिस, एक फ्रेंच डेयरडेविल ब्लॉन्डन ने नाइगरा फॉल्स को टाइटरोप पे क्रॉस करके दिखाया। भाई मैं अपने घर पर सीधी फर्श पर चलते चलते गिर जाती हूँ। 1908 में साइबेरिया में हुआ टंगुस्का इवेंट रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड ब्लास्ट, इतना पावरफुल था कि 8 करोड़ पेड़ गिर गए। एंड 1934 का दिन हिस्ट्री के लिए एक डार्क चैप्टर था। हिटलर ने नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स नाम का ब्रूटल पर्ज शुरू किया, जिससे उसने अपनी पावर और मजबूत की। वेल, हिस्ट्री हमें एक ही बात सिखाती है, कुछ लोग बैलेंस बनाते हैं और कुछ लोग बैलेंस बिगाड़ देते हैं दुनिया का। फिलहाल तुम अपनी लाइफ का बैलेंस बनाओ, अपने काम भी करते जाओ और मुझे भी साथ में सुनते जाओ। मेरा नाम है प्रिसिला, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर गानों का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। अब यहाँ गॉसिप जो है एकदम गर्मा गर्म आती है और अभी मैं फिलहाल बॉलीवुड बज लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। डांसर एक्टर राघव जुयाल एंड इन्फ्लुएंसर एक्टर निहारिका एनएम ने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी पिक्चर्स डाली है कि फैंस ने कॉमेंट सेक्शन को CID ऑफिस बना दिया है। अब सवाल ये है कि हार्ड लॉन्च है या सॉफ्ट लॉन्च है या फिर ये सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च है, क्योंकि दोनों ने ऑफिशियली अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन स्पेक्यूलेशन का इंजन जो है वो फुल टर्बो पे चल रहा है। और मसाला तब और बढ़ गया जब रैपर रफ्तार ने कमेंट्स में बस 3 इविल आई इमोजीज ड्रॉप कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने कहा हमें क्लूज मिल गए हैं। अरे भाई, इमोजी भी एविडेंस बन गए आजकल, तुम समझ नहीं रहे हो। सच क्या है, रिलेशनशिप है या अपकमिंग कोलैबोरेशन है, अभी तो सस्पेंस ही सस्पेंस है फिलहाल। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में एक बात तो पक्की है कि एक पोस्ट 1000 थ्योरीज को जन्म दे देती है। वैसे अगर तुम भी ऐसी थ्योरीज में बिलीव करते हो तो मुझसे शेयर करो तुम्हारी थ्योरी। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स चलाते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर इतना मूडी है ना कि सुबह बोलेगा गुड मॉर्निंग और दोपहर तक आते आते सरप्राइज मैं तो तंदूर बन गया हूँ कह सकता है तुमको। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये ऑफ कोर्स है मिर्ची मॉर्निंग। तो सीन क्या है फिलहाल, अभी टेम्परेचर है 68 डिग्री फारेनहाइट और स्काई जो है वो मोस्टली क्लियर है। मतलब मॉर्निंग वॉक का अगर तुम्हारा मूड है ना तो बस सनस्क्रीन लगाओ और काम पे चले जाओ। दोपहर तक मर्क्यूरी फुल एटीट्यूड दिखाने वाली है, हाई जाने वाला है 91 डिग्री फारेनहाइट तक और 2 से 3 बजे के बीच में पार्टली क्लाउडी स्काइज भी दिखाई देंगे। 3 बजे के बाद क्लाउड्स थोड़े से और बढ़ेंगे, लेकिन गुड न्यूज ये है कि रेन का कोई चांस नहीं है। 0 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड। अम्ब्रेलास को घर पर रहने दो, पानी की बोतल को साथ में ले जाना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड क्योंकि ऊपर से तो बरसने नहीं वाला है। अच्छा ये सुनो, आज है ना एक्सट्रीम हीट वार्निंग भी इशू हुई है। वार्निंग क्या है जी, वार्मिंग ही है, साथ में एयर क्वालिटी अलर्ट भी है। मतलब अगर आउटडोर प्लान्स बन रहे हैं तुम्हारे स्पेशली आफ्टरनून में तो थोड़ा सा इजी लेने का है मामला। हाइड्रेट करते रहना, लाइट क्लोथ्स यानी कि लेयर के प्लेयर बनकर जाना बाहर और अगर पॉसिबल हो तो एसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो आज के दिन। साथ साथ में अपना SPF 50 वाला सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक, सनस्क्रीन भी लगाकर जाना। वैसे भी देसी लोग हर सीजन में एक ही डायलॉग बोलते हैं, बस थोड़ी सी चाय मिल जाती तो मौसम का और मजा आ जाता। तो चाय भी पीते ही रहना एकदम हॉट हॉट, जस्ट लाइक द सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट आवर में। अभी फटाफट से नोट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, जाकर मुझे फॉलो करो MIRCHIPRIS पर और व्हाट्सएप करो मुझे अभी के अभी 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647 2444। Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो सेगमेंट जहां पर हम अपडेट्स लाते हैं अराउंड द वर्ल्ड की। सबसे पहले इलॉन मस्क इज बैक इन द ट्रिलियनेयर क्लब। टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर प्राइजेस में जंप के बाद उनकी नेटवर्थ एक ही दिन में ऑलमोस्ट 69 बिलियन डॉलर्स बढ़ गई। मतलब हम लोग यहाँ पर कैशबैक का नोटिफिकेशन देख के खुश हो जाते हैं और वहाँ पर वो बिलियंस में खेल रहे हैं।
2: और नंबर टू पर एक FIR रजिस्टर हुई है अगेंस्ट क्रिकेटर शशांक सिंह एंड हिज फादर शैलेश सिंह, अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर, आफ्टर देयर कुक अक्यूज्ड देम ऑफ असॉल्ट, अब्यूज and wrongful confinement in Bhopal. The investigations are ongoing.
1: Aur finally, FIFA se football fans ke liye bahut hi badi sad news hai. Four-time champions Germany FIFA World Cup se bahar ho gaye after losing a dramatic penalty shootout to Paraguay. Match extra time ke baad 1-1 tha, lekin penalties mein Paraguay ne history create kar di. Football sach mein wo game hai jahan par final whistle se pehle prediction karna hi nahi chahiye. Main hoon Prisala tumhare saath mein. This was Mirchi आवर का थ्री फॉर दिस आवर। मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट आवर में विद द नेक्स्ट मिर्ची आवर का थ्री। तब तक के लिए तो मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vida es para la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¿Aló, भाई? ¿Wrong number से बात कर रहा है? ¿Wrong number से?
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, wrong number से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ, मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया।
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
2: वाली बातें कर रहा
3: है, मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे
3: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल काम कर, चल अबे
4: जा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
9: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
8: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
9: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ।
12: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
11: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
12: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
13: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
14: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
15: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
19: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
18: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
2: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
4: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आर जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है। एक ही होता है।
20: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और आज का क्विक टेक अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है. व्हाट्सएप फाइनली तुम्हारी प्रिवेसी को थोड़ा सा और स्टाइलिश बना रहा है. अब जब तुम किसी नए इंसान से चैट स्टार्ट करोगे और अपना नंबर नहीं देना चाहते हो, ये जरूरी भी नहीं कि अब उसको नंबर दो. बस अपनी सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट में जाओ, यूजर नेम में जाकर अपना एक यूनिक यूजर नेम रिजर्व कर सकते हो. और अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम यूजर नेम अवेलेबल है तो उसे भी क्लेम कर सकते हो. मतलब अब हाय व्हाट्सएप नंबर की जगह हाय व्हाट्स योर यूजर नेम पूछा जाएगा. और अगर तुम अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हो, किसी के साथ सिचुएशनशिप में और नंबर शेयर नहीं करना चाहते हो, तो यूजर नेम दे सकते हो. प्रीटी मच लाइक टेलीग्राम. एंड स्पीकिंग ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट, अगर 4th of July तुम भी बिना कुछ कहे स्पार्कल करना चाहते हो तो ये सुनो. कैरेट लेन इजलिन लेकर आए हैं अपना गॉर्जियस एवरीडे डायमंड कलेक्शन जस्ट फॉर यू. सिर्फ गहने नहीं है यहाँ पर, तुम्हारे किरदार की कहानी बयां करते हुए नायाब हीरे हैं वहां पर. वाओ, व्हाट पावरफुल लाइन. और सिर्फ 4th and 5th July के लिए डायमंड ज्वेलरी पर फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है. सो वेदर यू आर गिफ्टिंग टू समवन स्पेशल, यू आर प्लानिंग टू पॉप द क्वेश्चन, या फिर खुद को हैप्पी फील कराना है, सेल्फ गिफ्टिंग का कुछ प्लान है तुम्हारा, तो लेट द डायमंड्स डू ऑल द टॉकिंग. एंड अभी फिलहाल इफ यू लाइक माई टॉकिंग देन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड एक्स प्रोफाइल्स. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, यानी कि MIRCHIPRIS, और साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033 647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

0: फिक्रे।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: It's 9:30 a.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
14: Tera kya hoga, Kalya?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab... मिर्ची का
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरे बर्थडे बेबीज कैसे हैं आज जून 30th के जो बर्थडे बेबीज हैं उनके साथ कौन से सेलिब्रिटीज शेयर कर रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे, लेट्स फाइंड आउट। ओलंपिक्स के GOAT माइकल फेल्प्स द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन एवर। फिर बॉक्सिंग रिंग के लेजेंड नन अदर देन माइक टाइसन। हॉलीवुड एक्ट्रेस लिजी कैपलन भी आज ही अपना बर्थडे मनाती है। और हमारे देसी कलाकार भी है बहुत सारे, दी एवरग्रीन एक्टर अरविंद स्वामी जिनकी स्माइल पर 90s का हाफ इंडिया फिदा था। तेलुगु सुपरस्टार अलारी नरेश, एक्ट्रेस अविका गौर, फुटबॉलर डेंजल फ्रैंको और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सूले भी आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आज के दिन तुम भी इस धरती पर आए थे तो टैलेंट, डिटर्मिनेशन और थोड़ी सी मेन कैरेक्टर एनर्जी तो पैकेज डील में आई थी तुम्हारे साथ। मेरी तरफ से ये दुआ है कि तुम्हारा नया साल जो है वो हिट प्लेलिस्ट की तरह हो, जिसमें एड्स कम हो, हैप्पीनेस ज्यादा हो और जीरो बफरिंग हो। और हाँ, अगर तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे है तो अपने बर्थडे के इनवाइट्स और केक्स मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। यहीं पर तुम मुझे किसी और को विश करने के लिए बर्थडे शाउट आउट भी भेज सकते हो, एंड आई विल टेक देयर नेम ऑन एयर एंड ऑल्सो रीड आउट योर विशेज। तो फटाफट से वो भेजो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033647244 इज माई नंबर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Listener mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, my Mirchi fam, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. क्विक पॉज लेंगे हम यहाँ पर म्यूजिक का, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पे सुनने का गोल्ड रेट अपडेट.
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रेटिंग एट $4,330, $4,330 पर ट्रे आउंस के साथ गोल्ड की प्राइस अबाउट $200 आउंस अपवर्ड ट्रेंड पर है. $200 ट्राई आउंस गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से ऊपर चले गए हैं. इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑफर्स में आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. आप गोल्ड का प्राइस आज लॉक करके ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे, और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ बिना डायमंड. आप गोल्ड का प्राइस आज लॉक करके ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे, और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ बिना किसी

0: Priscilla, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। एंड अब बारी है मिर्ची आवर का 3 की। यहाँ पर तुम्हें मिलती है 3 अपडेट्स। सबसे पहले एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने कहा है कि इंजीनियरिंग टैलेंट और वर्कफोर्स के स्केल पर इंडिया ही वो देश है जो चाइना को मैच कर सकता है। उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ग्लोबल रेस में एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर भी बताया है। नंबर 2 पर इंडिया ने 1 जुलाई से कमर्शियल बायर्स के लिए पेट्रोल और डीजल रिटेल सेल पर लगी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी है। ये टेम्पररी मेजर्स ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन के दौरान लगाए गए थे। अब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होने के बाद फ्यूल परचेजिंग रूल्स फिर से नॉर्मल हो रहे हैं। एंड फाइनली फीफा से ब्राजील ने जापान को 2-1 से हरा दिया और विनिंग गोल आया 95th मिनट में। मतलब फुटबॉल भी कभी कभी ना बॉलीवुड के क्लाइमैक्स से कम ड्रामेटिक नहीं होता। लास्ट मिनट तक टीवी ऑफ करने वाले फैंस जो है उनको ये अच्छा लेसन मिला होगा। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Pepe-Pepe-Pepe-Nerdy.
1: Escabana, poscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida fala burga. Nerdy, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है.
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे.
3: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके लिए.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: इट्स पटाक.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
10: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
17: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
18: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
19: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
0: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार.
0: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Welcome back to Mirchi Mornings. अब हम पता करते हैं हमारे सितारे आज क्या कह रहे हैं.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज जुपिटर और वीनस दोनों तुम्हारी साइड पर हैं. स्माइल करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस पहनो और क्रिएटिव लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो. लक वहीं पर मिलने वाला है. लकी कलर इज कोरल ऑरेंज. लकी नंबर इज 18. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज अपॉर्चुनिटी के बिना अपॉइंटमेंट आ सकती है. ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो. कभी कभी यस सबसे इंटेलिजेंट आंसर होता है. लकी कलर इज एमरल्ड. लकी नंबर इज 5. जेमिनी यानी मिथुन राशि, प्लान्स डिले हो रहे हैं, कोई बात नहीं, चिल मारो. मर्क्यूरी थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है, कॉफी पी लो, थोड़ा सा पेशेंस धर लो. रीसेट भी कभी कभी प्रोग्रेस होता है. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 27. कैंसर यानी कर्क राशि, डॉलर की टेंशन थोड़ी सी साइड पे रखो. अभी यूनिवर्स तुम्हारी स्प्रेडशीट से ज्यादा स्मार्ट है, ट्रस्ट करो, सब स्टेप बाय स्टेप सेटल हो जाएगा. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 11. लियो यानी कि सिंह राशि, फ्रेंड्स के साथ मिलकर आज कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है. टीम वर्क आज तुम्हारा सुपर पावर है, बस मीटिंग को चाय ब्रेक मत बना देना. लकी कलर इज रॉयल गोल्ड. लकी नंबर इज 39. वर्गो यानी कन्या राशि, हर रिक्वेस्ट पे हाँ बोलना जरूरी नहीं होता. आज अपनी एनर्जी जो है उसे सेव करो. रिमेम्बर सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 24. ये था आज का पहला राशि जोन. बाकी बची हुई राशियों को लेकर दूसरे राशि जोन में आऊंगी थोड़ी सी देर में. तब तक तुम्हारे लिए ये मिर्चीदार बैंगर्स प्ले करूंगी और तुम्हें याद दिलाऊंगी कि मुझे जाकर इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो. मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
3: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
2: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyo purani ada, bringing a global community back to its home.
3: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Oak Tree Road lo, best diamond jewelry kosam search istunnara, Krishna Jewelers me, exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Iselin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक माय दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और ये चल रहा है राशि जोन पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज स्लो होना बिल्कुल ओके है। हर वक्त हसल मोड में रहना जरूरी नहीं है, रिचार्ज भी प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट होता है। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 30। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, करियर स्पॉटलाइट तुम्हारी तरफ मुड़ सकती है। किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलने का चांस मिले तो कॉन्फिडेंटली हेलो बोलना। अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो हेडफोन्स उतार लेना। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज लोग थोड़े ज्यादा ओपिनियनेटेड लग सकते हैं। हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी पीस भी विनिंग की स्ट्रेटजी होती है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 22। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, पार्टनर शिप्स और जॉइंट प्लान्स थोड़ा सा स्लो चलने वाले हैं। गुड, इससे तुम्हें रीथिंक करने का मौका मिलेगा। बेटर प्लान, बेटर रिजल्ट्स। लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 41। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कंप्लेनर्स की वॉल्यूम आज हाई हो सकती है, लेकिन तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव ही रखो, बिल्कुल मिर्ची की तरह। हर बैटल ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है, कुछ बैटल्स छोड़ देना चाहिए। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 13। पाइसीज यानी मीन राशि, आज किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो मिस मत करना। तुम्हारी काइंडनेस किसी और के दिन को कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है, और कार्मा अटेंडेंस जरूर लगाता है, समझे। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 36। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते हैं मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: बस यार आज की मिर्ची मॉर्निंग्स यहीं तक, पता नहीं चला यार कब चाय ठंडी हो गई और शो जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ बताकर जाती हूँ। माइकल जैक्सन की लाइफ पर बन रही है माइकल नाम की मूवी जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $977 मिलियन की कमाई करके हाईएस्ट ग्रॉसिंग बायोपिक ऑफ ऑल टाइम का क्राउन अपने नाम कर लिया है। इसमें माइकल जैक्सन का रोल उनके ही नेफ्यू जाफर जैक्सन ने प्ले किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म ने ओपेनहाइमर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। मतलब किंग ऑफ पॉप का मैजिक आज भी फुल वॉल्यूम पर बज रहा है, या फिर लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। और ऑनेस्टली माइकल जैक्सन के सॉन्ग सुनते ही हम सबके अंदर का वो मून वॉकर थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, राइट? चाहे घर पर हो या ऑफिस के कॉरिडोर में हो, अपने आप डांस निकल जाता है। वैसे अब निकलने की बात से मुझे याद है कि मुझे भी निकलना है यहाँ से। मेरा शो खत्म हो चुका है, मेरा पैसा हजम नहीं हुआ है, अभी मैं खर्च करूंगी जाकर। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए तुम मुझे जाकर फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, वहां पर ही अपनी दोस्ती पक्की होगी MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। याद रहेगा ना? अभी के लिए ये याद रखो, खाओ पियो ऐश करो एंड बी रियली रियली गुड। टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2W।

0: यार कल ना मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड से बात कर रही थी एंड एक बड़ी अजीब सी चीज हुई और मुझे रियलाइज हुआ कि जब स्कूल में ये चीज हुआ करती थी ना तो मैं बड़ा चिढ़ा करती थी, लेकिन आज जब इसने ये बात कही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और हुआ ये था कि हम लोग टेक्स्ट पे बात कर रहे थे और मजाक चल रहा था दोनों के बीच में, एंड यू नो उसने फिर बात खत्म करी, आई टोल्ड हिम समथिंग, हाँ ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, सो आई टोल्ड हिम गेट वेल सून मामू। तो उसने कहा ओके ठीक है मोटी। जब उसने ये लिखा ना तो मुझे हंसी आ गई, और हंसी के साथ ना देयर वाज दिस वार्मथ जो मुझे महसूस हुई, मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल को किसी ने ना एक बड़ी ही वार्म सी चादर में लपेट दिया। वो जो वर्ड था ना मोटी, ये आजकल के टाइम पर तो बोलेंगे कि ओ दिस इज बॉडी शेमिंग एंड ऑल, बट आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी ये बॉडी शेमिंग नहीं लगा। आई डिड नॉट टेक इट पर्सनली, आई रादर फेल्ट रियली हैप्पी अबाउट इट। यार इतने जमाने बाद किसी ने मुझे हक से मोटी कहा है। आई मीन स्कूल में ना ये हमेशा मुझे बुला करता था, ऐसे ही मजाक किया करता था, और मुझे बड़ा बुरा लगा करता था। मैं हमेशा चिड़ा करती थी कि क्या है मैं मोटी नहीं हूँ, तू मुझे मोटी नहीं बुला सकता। और आज जब उसने मुझे मोटी बोला तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस वर्ड में ना कोई बुराई नहीं थी बल्कि अपनाइयत थी। इस वर्ड में उसकी टांग खींचने की वो जो कोशिश थी वो थी, इस वर्ड में उसका मुझ पर हक जताना था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सीरियसली सालों में किसी ने मुझसे इस हक से बात ही नहीं करी है। वही वाली बात है ना कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं ना कि सबके लिए बड़े हो जाते हैं, सब अपनी एक सीमा जो है वो मार्क कर लेते हैं, एक अदब से पेश आ रहे होते हैं, एक तरीके से आपके साथ पेश आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने अपनों से मिलते हो ना तब आपको लगता है कि हाँ यार आज लगा कि हम वही दोस्त हैं और हमारे बीच में वही बॉन्ड है। रियलाइजेशन ये था कि यार कितने लोग हैं मेरी जिंदगी में जो इस हक से मुझे मोटी बुला सकते हैं और मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, और अगले वाले इंसान को बोलते हुए भी डर नहीं लगेगा, उसे हक लगेगा। और आपकी जिंदगी में अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे हमेशा के लिए रखना जरूरी होते हैं ये लोग अपने आसपास। चलो जी इसी बात पे पुरानी यादों को ताजा करते हुए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
5: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
6: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जैसे इंसान की दो आंखें होती है ना, वैसे बॉलीवुड में भी दो आंखें हैं, एक 1993 की और एक 2002 की।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 1993 गोविंदा चंकी पांडे वाली आंखों के बारे में, जिसका कि ये गाना बड़ा ही सुपर डुपर हिट था। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी, बप्पी लहरी का म्यूजिक था एंड इंदीवर के लिरिक्स थे। और ये गाना, ओ माय गॉड, ये गाना तो आज तक भी हमें याद है। म्यूजिक ही ऐसा था यार। लेकिन आपको पता है, ये गाना आज जितना हिट है ना भाई, उस जमाने में यानी 1993 में तो ये इंस्टेंट हिट हो गया था चुटकी बजाते के साथ। बिकॉज इस गाने के अंदर परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लर्टेशन, मजाक और टपोरी रोमांस जो था। और इसी गाने की वजह से उस जमाने में गोविंदा भी बड़े फेमस हो गए थे। पर्दे के पीछे की बात यह है कि इस गाने को कंपोज रातों रात किया गया था, जब डेविड धवन ने बपीदा को कहा कि उनको ना कुछ रंगी नॉटी चाहिए, बिल्कुल ही गोविंदा स्टाइल कुछ होना चाहिए। बस क्या, लाल दुपट्टा ऐसा निकल कर आया कि भाई मार्केट में भी लाल दुपट्टे छा गए। सो मच सो दैट कि वो तो फैशन में ही तब्दील हो गया। एंड एवरी गर्ल उस जमाने में वांटेड टू कॉपी द लुक फ्रॉम द सॉन्ग। और एक मजे की बात बताऊं आपको, वैसे इस बात में किसी को शक तो होगा ही नहीं कि इस गाने में जो कोरियोग्राफी है उसके अंदर गोविंदा के जो स्टेप्स है ना, वो किसी और ने नहीं, गोविंदा ने खुद कोरियोग्राफ किए। इनफैक्ट डेविड धवन ने क्लियरली बोल दिया था क्रू को कि यार गोविंदा को कोरियोग्राफ करने की जरूरत नहीं है, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। और चंकी पांडे लेटर ऑन मजाक में एक इंटरव्यू में ये बात बोल ही गए कि यार इस गाने के लिए अगर क्रेडिट देना है ना, तो गोविंदा की एनर्जी को देना चाहिए और मेरे हेल्पलेस एक्सप्रेशंस को देना चाहिए, विच आई वुड नॉट डिनाई। गोविंदा चीज ही ऐसी है यार कि उनके आसपास कोई भी हो ना, उसको ओवरशैडो कर ही जाते हैं। आज नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन हाँ उस जमाने में तो 100% ये बात सही थी। चलो जी, इसी बात पे गोविंदा की इस मूवी से ना सही, लेकिन कूली नंबर 1 से दिस गाना कमिंग अप योर वे। एनर्जी की पिच को हाई रखते हुए स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy hoy.
5: Confusion hi confusion.
2: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
7: Carrot Lane presents Everyday Real Diamonds. Now starting at just $49. Beautiful, versatile diamond designs crafted to shine with you every single day. Because diamonds aren't just for special occasions, they're for your everyday moments too. Celebrate this 4th of July with flat 20% off on diamond jewelry at the Carrot Lane store on Oak Tree Road. Hurry, offer valid only from July 3rd to July 5th.
8: Oh no!
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
0: It's 11:30 AM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
7: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
6: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
8: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आंखें भी दो होती हैं और आंखें मूवी में गोविंदा भी दो थे, लेकिन ये जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं था गोविंदा के लिए, यानी कि डबल रोल प्ले करना।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड इन द फिल्म आंखें गोविंदा ने बुन्नू और मुन्नू इन दो कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया था। बुन्नू जो कि डिसिप्लिन्ड बेटा था और मुन्नू जो कि एक टपोरी बंदा था। अभी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए गोविंदा घंटों आईने के सामने रिहर्स किया करते थे। इनफैक्ट जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो शुरुआत के जो दिन थे ना शूट के, उसमें तो कॉस्ट्यूम टीम जो थी वही कंफ्यूज हो गई थी कि बुन्नू के कपड़े कौन से और मुन्नू के कपड़े कौन से हैं। और एक बारी तो गोविंदा को उन्होंने जब मुन्नू का शूट होना था तो बुन्नू के कपड़े पहना के भेज दिया, जिसपे कि डेविड धवन भी हंस दिए और मिड शॉट बोल चुके कि यार ये बुन्नू और मुन्नू का कंफ्यूजन तो फिल्म के बाहर भी चल रहा है, फिल्म के अंदर तो अलग ही बात है। और इस फिल्म में कादिर खान साहब, जिन्होंने गोविंदा के फादर का रोल प्ले किया है, वो बड़े फेमस थे पूरे सेट पर बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो अपने डायलॉग्स ना खुद ही रीराइट किया करते थे। मतलब जो लिख कर आते थे वो परफॉर्म नहीं करते थे, अपने डायलॉग्स खुद ही बनाते थे। और इस बात से गोविंदा जो थे वो इतने खुश थे कि उन्होंने ये भी बात कही थी एक इंटरव्यू में कि उनके साथ काम करना ना एक एक्टिंग स्कूल की तरह है, क्योंकि जब इन दोनों लोगों का सीन हुआ करता था तो कादिर खान साहब तो ऑफकोर्स सीन के बीच में जबरदस्त इम्प्रोवाइज किया करते थे और उन्हीं से सीख के गोविंदा भी बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज कर लिया करते थे। इनफैक्ट कादिर खान साहब की खास बात ये भी है कि हमने इतनी सारी मूवीज देखी है जिनके की डायलॉग्स की हमने खूब तारीफें की हैं, खूब कदर करी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो फिल्मों के डायलॉग्स कादिर खान साहब ने लिखे हैं। वो फिल्मों के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे, क्योंकि यार इसके लिए तो एक अलग ही मिडडे मोहब्बत शो होना चाहिए। और इसी बात पर कमिंग बैक टू द फिल्म आंखें, जो मैं बात बता रही थी ना कि कादिर खान साहब और गोविंदा जब सीन किया करते थे साथ में तो इम्प्रोवाइज करते रहा करते थे। इनफैक्ट एक सीन तो ऐसा था जिसमें कादिर खान साहब ने मतलब एकदम से ही एक नया डायलॉग जो है वो गोविंदा की तरफ फेंक दिया। अब गोविंदा जो थे उन्हें इतनी जोरों की हंसी आई जिसको कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया सो दैट ये सीन खराब ना हो, और उस हंसी को कंट्रोल करते हुए कैरेक्टर में रहते हुए उन्होंने वो सीन दे दिया। एंड दैट स्पॉन्टेनियस मोमेंट इट मेड टू द फाइनल कट। वैसे एक बात तो है, अगर हम एक्टर बन जाए ना अपने करियर के हिसाब से भी, तो जो हम जिंदगी को बोलते हैं ना कि कितनी स्पॉन्टेनियस है, कभी भी कुछ भी हमारी तरफ फेंक देती है, वैसे ही हम एक्टिंग में भी जिंदगी की तरफ भी कुछ भी स्पॉन्टेनिटी दे सकते थे, यानी कि जिंदगी के साथ भी हम मन मन खेल सकते थे। बट एनीवेज, हम जहां हैं वहां अच्छे हैं, क्या बोलते हो? चलो जी, विद दिस स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ये आवाज आज तो मुझे नॉस्टैल्जिया लगती है, लेकिन उस टाइम पर ये नॉइज भी थी और साथ ही साथ इस बात का हिंड्रेंस भी कि अब टीवी देखने को नहीं मिलेगा।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, कुछ शोर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। आज के दौर में तो वो मुझे अच्छे ही लग रहे होते हैं, लेकिन जब उस टाइम पर केबल टीवी पर ये दिखाई दिया करता था ना, दाने दाने दाने, और यू अजीब सा वाइट स्टैटिक नॉइज आया करता था, तो बड़ी चिड़ुआ करती थी कि ओ नो, केबल चला गया, अब हम पिक्चर कैसे देखेंगे। और बड़ी इरिटेशन हुआ करती थी यार, बिकॉज दिस वॉज क्लियरली नॉट अ गुड साइन, क्योंकि हम सारे के सारे कजन्स जो थे ना, वो बड़ा मूड बना के टेलीविजन चालू किया करते थे कि यार अब होमवर्क हो गया, खेल लिए, अब हमारा टीवी टाइम है, अब हम केबल देखेंगे। लेकिन रखा रह जाता था हमारा टीवी ऑन टेबल और नहीं चल पाता था हमारा केबल, जब ये आवाज हमें सुनने को मिलती थी और वो टीवी पर दाने दाने दाने दाने अजीब से कीड़े मकोड़े देखने को मिला करते थे। कितना ही रिमोट चला लो या कितना ही टेलीविजन का नॉब घुमा लो, कुछ ना होता था। और फिर आता था एक आखिरी आइडिया कि चलो एंटीने को हिलाकर देखते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ
6: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
5: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ
6: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
7: ਕਿਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਬਿੰਨੂ ਟਿਨੋ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ
8: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
5: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ
9: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना
10: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49 ब्यूटीफुल वर्सटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th
11: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा
12: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Luna,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें देखे जमाने बीत गए यार, लेकिन तुम्हारी याद अब भी दिल के किसी कोने में इंजन की हल्की टर टर की तरह गूंजती रहती है। कितनी सादगी थी यार तुम में, ना कोई डिजिटल डैशबोर्ड, ना भारी भरकम बॉडी, बस एक भरोसेमंद साथी जो हर सुबह तैयार रहती थी चाहे सर्दी हो या हो गर्मी। याद है मोहल्ले के लड़के लड़कियां बारी बारी से तुम्हें चलाने का ख्वाब देखा करते थे। तुम किक स्टार्ट नहीं पेडल स्टार्ट हुआ करती थी और हवा से बातें करती हुई निकल पड़ती थी सकड़ी सी गलियों से स्कूल कॉलेज ऑफिस तक। वो अलग बात है कि वो जो तुम हवा से बातें करती हुई निकलती थी ना, वो उस जमाने के हिसाब से स्पीड ठीक थी। आज के जमाने में तो 40 के ऊपर चला लेते हैं नॉर्मल में भी। बड़ी ही सादगी का दौर था वो जब तुम आई थी कि तुम्हें घर पे लाने पर ही लोगों के सीने चौड़े हो जाते थे। आज तो लग्जरी कार्स भी आ जाए तो व्हाट नेक्स्ट की बात आ जाती है। वैसे तुम सिर्फ एक गाड़ी तो नहीं थी यार, तुम तो उस दौर की आजादी थी जब हेलमेट जरूरी नहीं था पर मुस्कुराना जरूरी था। जब हवा में उड़ते दुपट्टे और कानों में बजते तुम्हारे इंजन की आवाज किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगते थे। आज जब मैं किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होती हूँ ना, तो तुम्हारी याद बहुत आती है यार। बिना शोर के चलने का मजा तो है पर वो रूह से जुड़ाव नहीं है। तुम तो फैमिली का हिस्सा थी यार, किसी एड की तरह लूना है ना कहकर घर वाले बेफिक्र हो जाते थे। कभी किसी म्यूजियम में तुम्हें फिर से देखो ना, तो शायद वही पुरानी मुस्कान लौट आएगी और मेरा दिल एकदम से छलांग मार चुका होगा उस सादे प्यारे से जमाने की सवारी बनने के लिए। प्यार और यादों के साथ तुम्हें याद करती तुम्हारी सवारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: Oak Tree Road lo, best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Ezelin.
11: It's 12:30 PM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: midday mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाज में ऐसा कौन सा गाना है जो अब बनने वाला है कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना?
0: मिर्ची 90s कैसेट।
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो। और ये एग्जैक्टली वो मोमेंट था जब पू को रोहन से मोहब्बत तो नहीं लेकिन हाँ एक इनक्विजिटिवनेस जरूर सी हो गई थी कि ये बंदा आखिर है कौन जिसकी तरफ मैं खींची चली जा रही हूँ। एंड ये गाना जो है इसका पिक्चराइजेशन एवरीबडी रियली लव्ड इट, कुछ हटके सा ही था। एंड इनफैक्ट करीना कपूर की कलरफुल वार्डरोब, द कलरफुल कार्स एंड जो डांसर्स इतने अतरंगी नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ इट मेड द सॉन्ग लुक वेरी मेस्मराइजिंग एंड मैजिकल। लेकिन इस गाने की एक और बड़ी खास बात है एंड दैट इज ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस। वेल ये गाना फॉरेन कंट्री के किसी एक म्यूजियम में शूट हुआ था और वहां पर इस गाने को शूट करने के लिए जो मोहलत दी गई थी दैट वॉज नॉट क्वाइट अलॉट, एक घंटे का या दो घंटे का इन लोगों को टाइम दिया गया था कि इतना टाइम है आपके पास, जितना शूट कर सकते हो कर लो। एंड एक गाने को शूट करने में बहुत टाइम लगता है बॉस, लेकिन ऋतिक रोशन का जो टैलेंट है रिगार्डिंग डांस वो यहाँ पर काम आया। एंड फराह खान जो इस गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी वो इतनी खुश हुई और जबरदस्त तरीके से सरप्राइज और शॉक हो गई कि ऋतिक रोशन ने कितनी जल्दी इस गाने की शूट निबटवा दी विद इन द टाइम स्पैन जो कि म्यूजियम वालों ने दिया था कि आप इतने में ही इस गाने को शूट कर सकते हो वरना सॉरी बॉस। एंड विदाउट मेंशनिंग दिस फैक्ट अबाउट दिस गाना, ये गाना मैं तो नहीं चला सकती थी। चलो नाउ आई कैन प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू। जाते जाते ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की लेकिन फिर मिलेगी चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कॉज इट्स हॉट।
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

क्या आपको भी एक टाइम पे परवीन बाबी और जीनत अमान में बड़ा कंफ्यूजन होता था, दोनों एक जैसी लगती थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको भी ऐसा लगता था तो गिव मी अ हाई फाइव। छोटी होती ऐसी कंफ्यूजन बहुत होती थी ना, जैसे मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी नेल्सन मंडेला और मंडल कमीशन में। वेल लेट्स नॉट गो देयर, पॉलिटिकल मामला है, सेंसिटिव मामला है, हम फिल्मों पे वापस आते हैं। दो गानों में भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, एक तो ओ मेरे सोनारे सोनारे सोनारे और एक ओ मेरी सोनी। बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम के बाद क्लैरिटी मिली कि ओ मेरे सोनारे सोनारे तीसरी मंजिल का गाना है, शब्बी कपूर साहब आशा पारेख पे पिक्चराइज्ड, एंड ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना यादों की बारात का गाना है, पिक्चराइज्ड ऑन विजय अरोड़ा एंड परवीन बाबी एंड जीनत अमान। गाना सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: भाई अनुराधा पौडवाल वैसे तो 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनके करियर की शुरुआत 70s में हुई थी एंड शी रोज टू फेम इन 80s। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो उन दिनों किस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी, किस तरह से गाने बनते थे, क्या खूबसूरती होती थी, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन दिनों में ये होता था कि इफ देर वॉज अ स्मॉल मिस्टेक ऑल्सो तो एवरीबडी हैड टू, मतलब दोबारा से पूरा गाना पड़ जाता था, बजाना पड़ जाता था। यू हैड टू बी मोर प्रिपेयर्ड कि ये नहीं होता था कि चलो एक वर्ड गलत गा दिया तो उतना एक वर्ड आज के जैसा। एंड देन ऑफकोर्स एवरीबडी न्यू कि क्या गाना चल रहा है, तो म्यूजिशियंस मतलब फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोगों की कभी कभी रिकॉर्डिंग्स में 2-3 घंटे लग जाते थे, कभी दिन भर लग जाता था। और मुझे याद है कि स्पेशली सुभाष घाई जी के लिए तो 2-2 दिन तक रिकॉर्डिंग चलती थी, तो उस वक्त की वो ब्यूटी एक अलग ही थी।
0: ब्यूटीफुल, लेकिन अभी हम जो गाना सुनने वाले हैं वो ऐसा ब्यूटी टाइप का नहीं है, वो थोड़ा बीस टाइप का है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
8: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans with Charu only on

आपको पता है देवानंद साहब अपनी डिस्कवरी जीनत अमान को किस नाम से बुलाते थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो उनको बुलाते थे जीनी बेबी कह के। जी, एंड अपनी बुक में उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि उनके मन में जीनत अमान के लिए एक टाइम पे फीलिंग्स आ गई थी। सो ये वन साइडेड फीलिंग्स थी, बिकॉज जीनत अमान यूज टू लुक अप टू हिम एज हर मेंटोर ओनली। हाँ, ये लव इश्क प्यार मोहब्बत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन क्रिएट कर देता है कई बार, और आप भी एक बढ़िया सा सीन क्रिएट कीजिए ना जिसमें आपकी मुस्कान जा रही है कान तक। और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient.
4: Very complex.
5: Clumsy or
6: confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: एक बहुत ही सुंदर गाना दो सुंदर आवाजों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1969 की फिल्म प्यार का मौसम का गाना तुम बिन जाऊं कहां, जो मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि दो अलग अलग किरदारों पे पिक्चराइज था। एक तो फिल्म के जो हीरो हैं शशि कपूर साहब, उन पे जो पिक्चराइज था वो रफी साहब की आवाज में था, बिकॉज ये एक रोमांटिक सॉफ्ट वर्जन था। इसके वीडियो में शशि कपूर साहब हैं और आशा पारेख जी हैं, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। लेकिन जो दूसरा वर्जन है किशोर कुमार साहब वाला, वो भारत भूषण जी पे पिक्चराइज था। भारत भूषण जी जो शशि कपूर के फादर प्ले करते हैं, और इसका आप वीडियो देखेंगे तो वो गाना गा रहे हैं अपने उनकी फैमिली साथ में, उनकी बीवी और बच्चा साथ में है, छोटा सा बच्चा और उनकी वाइफ। तो बिल्कुल ही अलग फील है। रफी साहब वाला जहाँ रोमांटिक है, ये वाला सोलफुल है। और यहाँ हम कौन सा वर्जन सुनने वाले? वेल, जो यूजुअली सुनते हैं उससे डिफरेंट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुम

0: मिड 60s में FTII पुणे से अपना एक्टिंग कोर्स करने के बाद बॉम्बे में काफी स्ट्रगल करने के बाद जब काम नहीं मिल रहा था तो असरानी साहब FTII में ही एक्टिंग के प्रोफेसर बन गए, साथ साथ अपनी स्ट्रगल भी कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी इसी इंस्टीट्यूट में गेस्ट फैकल्टी थे। असरानी साहब अक्सर उनसे मिलते रहते थे, काम मांगते रहते थे। एक बार ऋषिदा जब गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट आए तो क्या हुआ, सुनिए एक बार असरानी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: उनके दो तीन असिस्टेंट आए साथ में आए थे, मैंने उनको पूछा कि भाई कौन सी फिल्म है, क्या है? बोले कुछ नहीं, एक लड़की ढूंढ रहे हैं वो गुड्डी के लिए, बाकी तो कुछ नहीं, और ये बताते कुछ है नहीं कहानी में कौन है क्या है क्या है। बड़े काफी मैंने पूछा उनसे तो बोले हमारा नाम लेना मत यार तुम, एक छोटा सा रोल है जो एक लड़का गाँव से आता है हीरो बनने के लिए और एक्स्ट्रा बन जाता है जूनियर आर्टिस्ट, मगर हमारा नाम मत लेना। उसमें गुलजार साहब भी थे, सब बता के चले गए। अब वो आए रिश्ता वहाँ से लड़की का जिया बहादुर से मिलके वापस कार में बैठने लगे तो मैंने कहा दादा हाँ बताएगा, हम बताएगा भाई, बट मैंने कहा ये सिलेक्ट हो गए क्या? नहीं नहीं अभी स्क्रीन टेस्ट होगा हम देखेगा। ओके मैंने कहा दादा हमारा भी कुछ तुमको बोला ना हम करेगा करेगा, मैंने कहा 3 साल हो गया करेगा करेगा बोलता, कब करेगा?
0: वेल इसके आगे क्या हुआ सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: ये लेट 70s की बात है जब असरानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे और वीकेंड्स पे बॉम्बे जाके फिल्मों में काम भी ढूंढते थे। तब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए FTII पुणे आए और किसी तरह ऋषिदा के असिस्टेंट से बात करके असरानी साहब ने ये पता लगा लिया कि इस फिल्म में एक ऐसा रोल है जो शायद उनके लिए ठीक हो सकता है। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में असरानी साहब ने क्या कहा था।
1: तो मैंने उनको बोला, दादा गाड़ी में बैठते, एक है एक लड़का आता है गांव से हीरो बने। कौन बोला तुमको ये? बोला कौन? की रे जी होशी की रे, बोलो सब जो जितने असिस्टेंट थे उनको, तुम किसने बोला कि होशी की? कौन बोलता कहानी? बाप रे, मैंने बोला माफ कर दो मुझे मत। बोला बोला ना हम चिट्ठी भेजेगा, मुझे डांटते आके चले गए। और उस वक्त क्या था, जब चिट्ठी कोई किसी की आती थी बाहर से कहीं से भी, नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे वहां से पिकअप कर लो, तो मैं रोज देखता था कोई चिट्ठी आ जाए। फिर एक दिन चिट्ठी आई और उसमें नाम था जया बहादुरी का। इससे पहले कि वो पहुंचे बॉम्बे, मैं पहुंच गया बॉम्बे। और जाके मैंने बोला, दादा बोले तुमको थोड़ी चिट्ठी लिखा है, फिर उनको दया आगे होगी। फिर स्क्रीन टेस्ट हुआ उनका और ये दो सीन का रोल मुझे दिया उन्होंने गुड्डी में, वहां से शुरू।
0: और यहां से जो शुरू हुआ तो 50 साल का एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंट करियर बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आंख मारे लाल लाल सिग्नल
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
4: की कह रहे हो?
3: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: की कह रहे हो?
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
6: और टिल्लो ने काला कोट ऐवे नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
7: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
8: I am not going to bed with you ever again.
7: But why? What did I do?
8: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
7: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
8: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
7: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
8: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
10: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin. It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only.

0: ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई, पहली फुर्सत में जाके एक फिल्म देखो।
1: रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मेरा मूवी रिकमेंडेशन है 1973 की फिल्म दो फूल, और इसमें दो फूल कौन है? पुट्टन और छुट्टन, दो भाई लुक्खे लफंगे लेकिन रईस। रईस बाप की बिगड़ी औलाद जो हार्मलेस है लेकिन आवारा है, जिसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और ये किरदार निभाए हैं पुट्टन एंड छुट्टन वाले महमूद साहब और विनोद मेहरा जी ने।
0: जी
1: इसमें अशोक कुमार भी हैं जो इनके फादर बनते हैं, जीवन साहब भी हैं, और महमूद साहब का डबल रोल है इसमें, एक बंदर भी है। तो बेसिकली इन केयरफ्री केयरलेस लड़कों को इनका बाप घर से निकाल देता है, उसके बाद ये क्या शरारत करते हैं और कैसे फिल्म आगे बढ़ती है और क्या गचड़ पचड़ कंफ्यूजन होती है, इज द होल फन। महमूद साहब भाई क्या कॉमेडी, उनकी हैट्स ऑफ वंस अगेन। ए बाय द वे, इसी मूवी से इंस्पायर्ड है 1993 की मूवी आंखें, गोविंदा चंकी पांडे वाली, तो मिस मत करना। फिल्म का नाम दो फूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: आई आई आई आई आई आई आई आई।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

वो एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो तो आपको पता है उसके बारे में। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही फिल्म फेस्टिवल जिसमें फिल्मों की बात कम होती है, उसमें लोग क्या अतरंगी कपड़े पहन के आ रहे हैं उसकी ज्यादा बात होती है। अच्छा, सो कांस फिल्म फेस्टिवल में एक सेगमेंट होता है कांस क्लासिक्स, जहाँ पे क्लासिक फिल्में शोकेस की जाती हैं। और पहली इंडियन फिल्म जिसे वहां शोकेस किया गया था और उस फिल्म की टीम को इनवाइट किया गया था, वो फिल्म थी गाइड। सो 2008 में देवानंद साहब बकायदा कांस गए थे, वहां के रेड कार्पेट पे चले थे और ये गाइड फिल्म वहां पे शोकेस हुई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

आजकल चिट्ठियां विट्ठियां कोई लिखता भी है कि नहीं लिखता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम था जब चिट्ठियां लिखना फिर उन चिट्ठियों के जवाब का इंतजार करना हमारा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था, नहीं क्या छोटे होते? और सिर्फ रोमांटिक चिट्ठियां नहीं भाई, हम अपने रिश्तेदारों को भी चिट्ठियां लिखते थे, कजिन्स को भी चिट्ठियां लिखते थे, कोई हमारा दोस्त दूसरे शहर में रहता है उसको भी चिट्ठी लिखते थे, पेन फ्रेंड्स हम बनाते थे उनको भी चिट्ठी लिखते थे। और चिट्ठी लिखने भेजने के बाद उसके जवाब का जो इंतजार होता था, अच्छा फोन पे लैंडलाइन फोन पे भी बात हो जाती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जो लिखे हुए लफ्ज पढ़ने में उसमें से जो इमोशंस निकलते थे उनको फील करने में जो मजा आता था ना, वो मजा अलग ही था भाई। इसीलिए मैं ऐसे सोच रही थी कोई चिट्ठियां आजकल लिखता भी है कि नहीं लिखता है, मुझे तो बस बैंक की चिट्ठियां आती हैं और कोई चिट्ठी आती नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप मुझे चिट्ठी ना से हेलो हाय लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे @rj.charu rj.charu ये मेरा यूजर नेम है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
6: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu only on

अब बहनों और भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत जो गीत माला में पायदान नंबर 29 पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ब्रह्मचारी फिल्म का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, कंपोज्ड बाय शंकर जयकिशन, रिटन बाय हसरत जयपुरी एंड संग बाय मोहम्मद रफी। और क्या सिंगिंग है रफी साहब की इस गाने में भाई, मतलब दो लाइन ऊंचे सुर में फिर दो लाइन एकदम नीचे सुर में। कल तेरे जलवे पराए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी ऊंचे सुर में, और फिर फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी नीचे सुर में। ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगिंग रफी साहब, सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां इक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता.
4: की कह रहे हो?
3: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
4: की कह रहे हो?
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
4: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया.
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है.
6: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
7: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
8: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: रेखा हमेशा वक्त से आगे चली हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है 1983-84 में उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर एक ऑडियो कैसेट रिलीज की थी। इस बारे में उसी दौरान एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: मैंने कुछ साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा आई लाइक व्हाट आई डिड, काफी मुझे फर्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूं कि नहीं करूं। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, शी इज वेरी गुड एट योगा, तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, यू बीइंग अ फिल्म स्टार, एंड व्हाई डोंट यू कम आउट विद द टेप। तो वो टेप काफ़ी पॉपुलर भी होगा और एंड यू यू नो बिकॉज यू आर डूइंग इट, कोई नहीं तो आपके फैंस जरूर खरीदेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स एन ऑडियो टेप, इट्स नॉट अ वीडियो टेप। तो मैंने किया, बाय गॉड्स ग्रेस इट्स अ वेरी बिग हिट।
0: वेल, इस ऑडियो कैसेट का नाम है रेखाज माइंड एंड बॉडी टेम्पल और इसकी एक कॉपी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जिसमें इस ऑडियो के साथ रेखा की एक्सरसाइज और योगा फिटनेस के कुछ फोटोज भी हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzling.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Listener MA, back to back gana sunega.
8: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

दोस्तों मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहां कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vedva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे। देखा तूने, लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखूंगा,
3: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यार तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
12: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ,
13: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
12: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ,
13: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
14: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
15: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
16: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
17: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્તર પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા। અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ। અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂયોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ। આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 ઓર વિઝિટ 2849 વુડબ્રિજ એવન્યુ, એડિસન, ન્યૂ જર્સી।
18: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
19: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
18: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyo purani ada, bringing a global community back to its home.
19: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
0: तेरा क्या होगा कालिया, सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
4: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
3: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
4: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's go not donkey. Have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर नए ट्रेलर के रिलीज के बाद लोग या तो उसके एक्शन, वीएफएक्स या डायलॉग्स की बातें करते हैं, लेकिन अल्फा की ट्रेलर रिलीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी है। जी हाँ, लोग ट्रेलर से ज्यादा ना उस आइडिया की बात कर रहे हैं जो ये फिल्म लेकर आ रही है, क्योंकि बॉलीवुड का स्पाई यूनिवर्स हमेशा बड़े बड़े हीरोज के नाम से जाना गया, लेकिन अब उसी यूनिवर्स के सेंटर स्टेज में आलिया भट्ट और शर्वरी है। तो बस इसी बात ने कॉन्वर्जेशन कर दी है। ये ट्रेलर में एक्शन है, मिस्ट्री है, लॉर्ड बॉबी देओल का पावरफुल प्रेजेंस है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के सरप्राइज कनेक्शंस भी है, लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि सोशल मीडिया पर हर किसी का ना टेक अवे कंप्लीटली अलग है यार। किसी को आलिया का एक्शन अवतार सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगा, किसी को शर्वरी का स्क्रीन प्रेजेंस, किसी की नजर बॉबी देओल के लुक पर अटकी, तो कुछ लोगों ने ट्रेलर के लास्ट फ्यू सेकेंड्स को फ्रेम बाय फ्रेम डीकोड किया है वो खास सरप्राइज के लिए। तो बताइए दोस्तों, जब आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपने इसको किस तरह से व्यू किया? क्या बस एंजॉय करके निकल गए, या वो ट्रेलर खत्म होने के बाद आपने भी अपनी थियोरीज बनाई? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो चलिए अल्फा के इस पावरफुल ट्रेलर के बाद सुनते हैं आलिया भट्ट का ये अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 춤까?
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ये जून इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया? शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जून शुरू होते ही ना हम सबने सोचा था कि इस बार समर को पूरी तरह एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर पता ही नहीं चला कि यार जून का लास्ट वीक कब आ गया और लास्ट डे कब आ गया। कि कुछ प्लान्स कंप्लीट हुए, कुछ अभी भी व्हाट्सएप चैट्स में पेंडिंग पड़े हैं और कुछ बस अगले वीकेंड के भरोसे चल रहे हैं। और शायद ना हर मंथ हमें एक छोटी सी लर्निंग देकर ही जाता है, और जून ने भी यही सिखाया है कि टाइम कैलेंडर से नहीं मोमेंट से याद रहता है। और इसीलिए जुलाई शुरू होने से पहले एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि यार एक ऐसा प्लान जरूर कंप्लीट करेंगे जो हम कब से पोस्टपोन कर रहे हैं। तो आप भी बताइए दोस्तों कि जून का आपका सबसे यादगार मोमेंट क्या था, टेल मी ऑन इंस्टेड आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्योंकि यार मेरे तो जून का हर मोमेंट वही होता है जिसमें मैं आपके लिए एक धमाकेदार गाना बजाती हूँ और वही मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट होता है। तो चलिए उस पल को जीते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और दिन लंबे होते हैं, शामें धीरे धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा इंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीजन हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Grábala! ¡Murga, murga! ¡La viva la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अबे मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा हूँ?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने तुझसे
2: वाली बातें कर रहा क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ राइट नंबर ले, राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल अब जा।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
13: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
14: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ,
15: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
14: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ,
15: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
16: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
17: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
14: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
18: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
19: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th of July विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी, ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम July 3rd to July 5th.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: Bombay Express and Vaishnav Caterers, the finest indoor and outdoor catering service in USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties, and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241 or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
7: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
8: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
9: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
10: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1 ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
11: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
12: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
2: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा। बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do not donkey have a funky time.
2: बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये हमें हर इमोशन के लिए गाना दे ही देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बारिश हो तो अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग ड्राइव हो तो अलग, हार्ट ब्रेक के लिए अलग और सेलिब्रेशन के लिए अलग। और मजे की बात तो ये है कि कभी कभी हम फीलिंग्स बाद में समझते हैं और बॉलीवुड पहले ही उसके लिए गाना बना चुका होता है, और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो, या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग जरूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? डीएमबी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
6: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
7: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर है, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट अ स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टेमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है, और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी, और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मजेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना, तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था। और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मजे की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: se permite.
1: Escava na buscava na sacabana. Trabalha. Burga, burga. Na vida lá, burga. Mente, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तो अब क्यों आवाजें आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है
2: भाई. जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता. हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Oh no!
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
12: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा. सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर. आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा. हम अमेरिका में ताजा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं. हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं. आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 7329866241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी.
13: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज, हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
0: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
8: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहाँ ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विथ एम्स एजुकेशन, बिकॉज विथ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। For more guidance, call 908-222-0002, 908-222-0002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu for a long-lasting career of medical billing and coding specialist, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
9: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
8: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
9: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
10: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
11: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मत पूछना। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था। कंपोज्ड बाय प्रीतम, 2009 का लव आजकल का एल्बम। और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। आर फेवरेट आहू आहू, क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है। फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं, क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था और ना सिर्फ उस वक्त, अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Dance Basanti.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, कुछ दिन ना बस लकी होते हैं। शाम शाम द लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी लकीली फ्री कॉफी अपग्रेड मिल जाती है, कभी पार्किंग एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मिल जाती है, कभी सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन मिल जाते हैं, तो कभी रात को फायरवर्क्स एकदम क्लियर नजर आते हैं। तब लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। और शायद इसीलिए हॉलीडेज हमें इतने पसंद होते हैं, क्योंकि हॉलीडेज का मजा ही तब आता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशियां मिल जाए। और अगर इस 4th of July आपकी लकी लिस्ट में एक और सरप्राइज ऐड हो जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस 4th of July के सेलिब्रेशन में आरके ज्वेल ला रहे हैं थोड़ी और एक्साइटमेंट। आपको बस विजिट करना है आरके ज्वेल्स एट 1377 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी, एंड यू विल गेट टू स्क्रैच अ कार्ड एंड गेट एक्साइटिंग ऑफर्स। और मजे की बात तो यह है कि इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोई परचेस करने की जरूरत नहीं, यू विल डायरेक्टली गेट टू स्क्रैच अ कार्ड एंड अवेल एक्साइटिंग ऑफर्स। तो हो सकता है 4th of July आपका लकी डे हो, तो जल्दी से विजिट कीजिए आरके ज्वेल्स एट 1377 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और मुझे जरूर बताइए कि लकी होने के बाद वो कौन सा गाना है जो आप सुनना पसंद करोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि आरके ज्वेल्स जा रहे हो तो लकी तो होगे। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाई प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज ही ऐसी थी, जो रॉनेस उनकी आवाज में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मजे की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियां फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियां फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. La birba la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: ऑफ कोर्स
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज, ग्लास व्लासे थे, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता हूँ,
3: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा।
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
12: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
13: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
12: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
14: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab mirchi kha.
19: Radio Mirchi, it's hot.

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड भी ना न्यू जर्सी टर्न पाइक हो चुका है, क्योंकि सबको एक ही वक्त पे निकलना होता है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 बॉलीवुड का सबसे क्राउडेड मंथ्स में से एक माना गया है, जहां मल्टीपल मेजर रिलीजेस एक ही महीने में स्क्रीन्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी रिलीजेज एक साथ आने वाली है कि स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियंस अटेंशन दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ते ही जाने वाली है। और अगर लिस्ट भी देखे ना तो मजा आ जाता है। मतलब मूवीज लाइक मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2 और कहीं और बड़े बड़े टाइटल्स लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यार इसमें ना ऑडियंस का ही फायदा है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मतलब एक जमाना था हम कहते थे कि यार कोई अच्छी मूवी ही नहीं बन रही है, तो अब प्रॉब्लम उल्टी हो चुकी है, क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं आ चुकी है कि हम ये कहने वाले हैं कि पहली कौन सी मूवी देखे। तो आप भी जरूर बताना कि यार जून में आप अगर एक ही मूवी देख पाओ बॉलीवुड की थिएटर में जाकर, तो वो कौन सी मूवी होगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। करते हैं यार थोड़े बहुत वॉचलिस्ट कंपेयर, और तब तक के लिए आपके लिए ये मजेदार सा नई रिलीज वाली मूवी का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: नो
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
8: कोहली goes down the ground. कोहली goes out of the ground.
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, हम सब ने टाइटन की घड़ी देखी है, लेकिन कभी सोचा है कि एक इंडियन वॉच ब्रांड दुनिया के मैप पर कैसी पहुंची? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जून ओटीटी पर एक सीरीज बहुत ही क्वाइटली बस क्रिएट कर रही है। जी हाँ, मेड इन इंडिया, अ टाइटन स्टोरी। सीरीज में नसीरुद्दीन शाह रिपोर्टली JRD टाटा का रोल निभा रहे हैं और जिम शार, माई फेवरेट, ज़र्सिक देसाई का रोल में नजर आ रहे हैं। कहानी बस एक कंपनी की नहीं है, बल्कि उस विजन की है जिसने इंडियन कंज्यूमर ब्रांड को ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिया है। और मुझे तो लगता है कि ये स्पेशली ना हम जैसे NRI ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेगी, क्योंकि जब भी हम कहीं भी मेड इन इंडिया को प्राउडली देखते हैं ना, उसके पीछे का सपना और उसके पीछे की रिस्क जब जानने मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये सीरीज बिजनेस स्टोरी कम और एम्बिशन स्टोरी ज़्यादा लगती है, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपने भी ये सीरीज देखी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। अगर देखिए तो आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारु कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मजा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊंगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।